सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह के सुनहरे सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना, दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर, आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजरी की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे सुबह 9 बजे हमारे अगले खास और रंगों से भरे कार्यक्रम घूमर की ओर, क्योंकि साथियों राजस्थान की संस्कृति में घूमर केवल एक लोक नृत्य नहीं बल्कि नारी की खुशी, सम्मान और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। इसी परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित है हमारा यह विशेष कार्यक्रम घूमर, जहां महिलाओं से जुड़ी बातें, उनकी प्रतिभा, अनुभव और जीवन की प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाई जाती है। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम

पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना, या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात
हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

भाइन बोनों ना गीत बाद आप सभी नु फेरे स्वागत करे हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम की भाइन बोनों गीत तक की पहले हमें विषय बताड़ियों हतु कि आज हमें बात करवा वाला हूँ कि आज जो जलवायु परिवर्तन है अना दौर में स्थानीय ज्ञान सामुदायिक प्रयास ने अनुकूल खेती आड़ी अपन हेते वदम। अंजलि बोन अपन देखो हूँ की प्रकृति ना जी संकेत है ने आ विज्ञान जो सफर है अना आपड़े पूर्वज हता वी अना ने संकेत ने समझता हता। पेड़ों ने पत्तीय पक्षियों नो व्यवहार ने हवा ने बादल ने बदलती दिशा आ सब अपने पूर्वज ने मार्गदर्शन हता। पण आपण देखा हां कि आ सब संकेत अवेना टाइम में अस्थिर थई जाय है। मौसम नो चक्र है वो बदलाई गयो है। तापमान आपण देखा हां कि बढ़ी रही है। वर्षा अनियमित थई गई है। आ स्थिति आपने आ ही काढ़े है कि अवेना टाइम में केवल पारंपरिक ज्ञान ही आपड़े बल दे पर्याप्त नहीं है बल्कि आपड़े वर्तमान नी परिस्थिति ने हिसाब खती नवी समझ ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने हाथ आगाड़ी वधवू है। आ संतुलन आजे खेती

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों को नई परिस्थितियों से निपटने में माता पिता कैसे मदद कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: कशिश, हम देखते हैं कि कई बच्चे नई परिस्थितियों का सामना करते समय संवेदनशील और भयभीत हो सकते हैं। अधिकांश बच्चे इन भावनाओं से निपटना सीख जाते हैं।
0: जी जी
1: श्रोता साथियों, यदि आपके बच्चे की चिंता उसे उन गतिविधियों में भाग लेने से रोकती है जिसमें अन्य बच्चे रुचि लेते हैं, तो उसे अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हमारी बातें इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी रहेंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोताओं को गीत सुनवाए हम पहले।
1: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों को नई परिस्थितियों से निपटना कैसे सिखा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को नई परिस्थितियों से निपटने में मदद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसके कई तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर श्रोता साथियों बताना चाहेंगे कि उसे धीरे धीरे सांस लेना सिखाएं और उसे समायोजित होने के लिए समय दें।
0: बिल्कुल।
1: यदि आपके बच्चे का नई परिस्थिति से डर उसके सीखने या खेलने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, तो आपको उनके साथ कुछ गतिविधियां करके अपने बच्चे को उस गंभीर समस्या से बचाना होगा।
0: जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं अंजलि जी कि कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को कुछ नई परिस्थितियां डरावनी लगने लगती हैं। वो क्यों लगती है अगर इस बारे में जाने साथियों, तो हम देखते हैं कि कई बच्चे मिलनसार, जिज्ञासु और साहसी होते हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन श्रोता साथियों, कुछ बहुत ज्यादा सतर्क भी होते हैं। नई परिस्थितियों का सामना करते समय वे संवेदनशील या फिर डरे हुए भी हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आपको बताएं तो नई परिस्थितियों का सामना करते समय कुछ हद तक डर और चिंता होना सामान्य बात है, लेकिन दोस्तों, एक बच्चा होने का एक हिस्सा अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करना भी है और खोज करना भी है, साथ ही डर जैसी अपनी भावनाओं से निपटना सीखना भी है।
1: जी बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चे और युवा बच्चों में खुद को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा कौशल नहीं हो सकता, और जब वे अभिभूत होते हैं तो वे नखरे कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: और हम कह सकते हैं कि या मेल्ट डाउन कर सकते हैं। श्रोता साथियों, जब आप उन्हें जवाब देते हैं और उनकी भावनाओं को पहचानने में उनकी मदद करते हैं, तो वे सुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे को अक्सर चिंता या बेचैनी की भावनाएं होती हैं, तो उसका डर और भी बढ़ सकता है। स्थिति के बारे में सोचना भी उसे चिंतित कर सकता है। श्रोता साथियों,
0: जी हाँ।
1: इससे निपटने के लिए वे स्थितियों से बचने की कोशिश कर सकते हैं या उन्हें उन गतिविधियों में भाग लेने से रोक सकता है कशिश, जो अन्य बच्चों को पसंद है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, अगर आपका बच्चा डरता है तो आप उसका समर्थन कर सकते हैं, उसे मिलनसार और साहसी बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और उसे दिखा सकते हैं कि कई नई परिस्थितियों में उन्हें कैसा व्यवहार करने की जरूरत होती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो श्रोताओं, इस तरीके से हम ये जान पाए कि किस प्रकार से नई परिस्थितियों का सामना करने में बच्चे कभी कभार डर जाते हैं और ऐसे में माता पिता उनकी मदद कैसे कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: अब यही जाने कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो बच्चों को चिंतित या फिर शर्मिला बना सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि घर बदलना या फिर नया बिस्तर लेना, प्री स्कूल, डे केयर या स्कूल जाना, परिवार में समस्याएं जैसे कि परिवार का टूटना, किसी स्वास्थ्य पेशेवर जैसे डॉक्टर या फिर दंत चिकित्सक के पास जाना।
1: जी हाँ।
0: नए लोगों से बात करने में भी बच्चे कभी कभार चिंतित और तनाव महसूस करते हैं, और किसी अपने से दूर होना।
1: जी बिल्कुल।
0: दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि चिंता का अनुभव करने वाले सभी बच्चे आपको यह नहीं बता पाएंगे कि उन्हें डर लग रहा है। आप देख सकते हैं कि उनमें कुछ शारीरिक लक्षण दिख सकते हैं।
1: जी जी।
0: जैसे कि सोने में कठिनाई होना, पेट दर्द होना, भूख में परिवर्तन होना या फिर खाना खाने से इनकार करना, सिर दर्द या फिर किसी भी प्रकार की कोई बुरे सपने आना।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि बच्चों की चिंता के भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, कम चंचल होना, परेशान होने पर शांत होने में कठिनाई होना, अत्यधिक चिपचिपाहट होना।
0: जी
1: ये
0: जी।
1: सारी चीजें जो हैं वो बच्चों के अंदर हमें दिखाई देने लगती हैं जब वो किसी चीज से डर रहे हैं या नई परिस्थिति को अपनाने में वो घबरा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम हमारे बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं, इसको लेकर आगे हमारी श्रोता साथियों से कार्यक्रम में अवश्य बातें रहेंगी। लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हमारे जो बच्चे होते हैं वो नई परिस्थितियों को अपनाने में बहुत सी बार डर और चिंता महसूस करने लगते हैं।
1: जी जी।
0: इससे पहले हम ये जान पाए कि वो परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं और उसमें हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, यहीं अब बात करें कि माता पिता होने के नाते हम किस तरीके से हमारे बच्चों को इस परिस्थिति से निपटने में मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, अपने बच्चों की चिंताओं को स्वीकार करें और उन्हें ऐसी परिस्थितियों में न डालें जिससे वे डर जाएं। अपनी भावनाओं के बारे में बात करें और अपने बच्चों को ये बताने के लिए भाषा सिखाएं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा लगता है कि आप थोड़ा चिंतित महसूस कर रहे हैं। कभी कभी जब मैं चिंतित महसूस करता हूँ तो मेरा पेट हिलने लगता है। अपने बच्चों को नई परिस्थितियों से पहले तैयार करें, उन्हें उनकी नियमित दिनचर्या में होने वाले परिवर्तन के बारे में पहले से बताएं, या जब कोई चीज शुरू या बंद हो रही हो तब भी हम उन्हें बता सकते हैं।
1: बिल्कुल। साथी श्रोता साथियों, आप उन्हें साहसपूर्वक प्रोत्साहित भी कर सकते हैं और कुछ नया करने का प्रयास बता सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: आपको बताएं तो अपने बच्चे के साथ कुछ समय बिताकर उसे नई परिस्थितियों में ढलने और उसका आदी होने का समय आप दें।
0: जी हाँ।
1: उन्हें धीरे धीरे अन्य बच्चों के साथ खेलने और तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। कुछ समय के लिए अपने बच्चे से दूर आप जा सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को ये पता हो कि आप वहाँ हैं। इससे पहले कि वे परेशान हो आप उनके पास लौटाएं।
0: जी बिल्कुल कशिश। इसी के साथ अगर कोई परिस्थिति उनके लिए बहुत ज्यादा है तो आप उन्हें प्रबंधनीय हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें तैराकी करने से बहुत डर लगता है तो उन्हें कुछ देर के लिए बैठकर दूसरों को तैरते हुए देखने का सुझाव दें।
1: जी,
0: जब
1: जी।
0: वे सहज महसूस करें तो वे अपने पैरों को पानी में लटका कर देख सकते हैं। उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करें, उन्हें याद दिलाएं कि कोशिश करना अच्छा है।
1: जी हाँ।
0: कशिश, हम देखते हैं कि अधिकांश बच्चे आमतौर पर समस्याओं को स्वयं ही हल करना सीखते हैं।
1: जी जी।
0: इसलिए मदद करने से पहले उन्हें प्रयास करने दें। श्रोता साथियों, आप चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उन्हें सामना करने की रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें धीरे धीरे सांस लेकर खुद को शांत करना सिखाएं। 3 सेकंड के लिए सांस अंदर लें और 3 सेकंड के लिए सांस बाहर छोड़ें। अपने बच्चों को यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना है श्रोता साथियों कि आप खुद आत्मविश्वासी और मिलनसार दिखे, ताकि आपका बच्चा देख सके कि यह कैसे किया जाता है।
1: जी बिल्कुल। साथी श्रोता साथियों, यदि आप चिंतित हैं या यदि आपके बच्चे का नई परिस्थितियों से डर उसके सीखने या फिर खेलने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है और उसे बहुत परेशान कर रहा है, तो आप अन्य लोगों की सलाह भी ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश। इसके लिए हम बाल विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चों का डर बहुत बार माता पिता द्वारा उनकी मदद किए जाने पर भी नहीं जाता है।
1: जी जी।
0: तो ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए हम डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर हमें कुछ ऐसे आसान से उपाय बताते हैं, कुछ गतिविधियां हमें बताते हैं जिसके माध्यम से बच्चों का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे में श्रोता साथियों, नई चीजों को बच्चों के जीवन में अपनाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में शुरुआत से ही हम बच्चों के अंदर कुछ ऐसी आदतें डालें जिससे बच्चे जो हैं वो हर परिवर्तन को अपने जीवन में स्वीकार करें।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को बहुत सारी बातों से समझाना होगा और बच्चों से अपनत्व मित्रतापूर्ण व्यवहार करके ही हम ये सारी चीजें समझा कर उन्हें नई चीजों को अपनाने में मदद कर पाते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख भी रहे हैं कि समय हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी बिल्कुल।
1: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना दोस्तों को यहाँ पर एक और गीत सुनवा दें हम।
0: जी बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001।
0: जी हाँ।
1: और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी अपने राय सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

भाई बोनो, घर तक के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में।
0: जी हाँ
1: कशिश, खाद्य सामग्री मनुष्य स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खाद्य सुरक्षा एवं खाने की गुणवत्ता, जो कि एक मनुष्य के बेहतर और निरोग स्वास्थ्य की सुनिश्चितता का प्रमाण देता है।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, हमारे भारत में खाद्य सुरक्षा का महत्व एवं उसकी गुणवत्ता की भूमिका आज के इस युग में इतनी आवश्यक है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आज के समय में मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है कि वह जिस भोजन का सेवन कर रहा है वह कितना सुरक्षित है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, से आज के हमारे इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी भी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है शुरुआत में उन्हें गीत संगीत से रूबरू करवाने का, तो क्यों उस दस्तूर को हम पहले निभा लें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को। आप सुनते रहिए वागर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो हमने आपको बता ही दिया कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल कशिश, खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता की जानकारी के अभाव और लापरवाही के कारण आज पूरे विश्व में खाद्य जनित बीमारियां सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनते जा रही है। श्रोताओं, क्योंकि खाद्य असुरक्षा से अक्सर लोगों में एनीमिया, जिसे हम खून की कमी कहते हैं, कुपोषण, कम वजन होना, ये सब बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो भविष्य में किसी भी बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, और हम कह सकते हैं कि कई सारे रिसर्च में या अध्ययन में पाया गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पोषण की स्थिति खराब है, कुपोषण से ग्रसित बच्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
0: जी हाँ,
1: और हम कह सकते हैं कि उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई में भी वृद्धि हुई है। अविकसित और कमजोर वर्ग के बच्चे बीमारियों की चपेट में अधिक जल्दी आते हैं। कम वजन, उम्र के हिसाब से कम वजन यानी कि बच्चों का अनुपात भी बढ़ रहा है।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ श्रोताओं, आपको अगर हम खाद्य सुरक्षा के अर्थ को बताएं तो खाद्य सुरक्षा से हमारा तात्पर्य यही है कि मनुष्य के लिए पर्याप्त मात्रा में खाने की उपलब्धता और जो भी खाने का सेवन मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है वह उसके स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ और पौष्टिकता से भरपूर हो और वह खाना मानव के शरीर को स्वीकार्य भी हो।
1: जी हाँ, और हम कह सकते हैं कशिश कि खाद्य सुरक्षा में उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता कराना, उसे लोगों की पहुँच तक सुलभ बनाना, किफायती मूल्य पर बेचना और भोजन की पौष्टिकता को सुनिश्चित करना श्रोताओं अनिवार्य है। और इसके लिए भारत सरकार ने, हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा और मानक

0: प्राधिकरण यानी कि FSSAI की स्थापना की, जिसका कार्य भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की निगरानी और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ श्रोता अब आपको बताना चाहेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता की महत्ता आज के इस युग में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भोजन से पैदा होने वाली बीमारी बड़े स्तर पर सामने निकल कर आ रही है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि अगर आपको नाम बताएं श्रोताओं, तो कोरोना वायरस, डायरिया, खसरा, रोटा वायरस, कवक जिसे हम फंगस कहते हैं, टाइफाइड, इन सभी बीमारियों के कारण मनुष्य के लिए स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करना अति महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि इसे रोका जा सके।
0: बिल्कुल कशिश, और हम देख भी पा रहे हैं कि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि बच्चों में वजन कम होना, एनीमिया हो जाना यानी कि खून की कमी हो जाना, फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें धीरे धीरे लक्षण पाए जाते हैं, और जब वो युवा होता है तो वो बहुत कमजोर हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: उसे पता ही नहीं होता है कि उसके शरीर में किस चीज की कमी हो गई है, फिर बाद में वो गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में हमें पहले से ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह का खान पान लेना है, किस तरह का खान पान खाना है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि कशिश हम कहते हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और जब युवा साथी ही इस तरह के भोजन का सेवन करेंगे जिससे उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, तो वो आगे किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे और उनका मन भी नहीं लगेगा किसी कार्य को करने के लिए।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए आज हम हमारे युवा साथियों से यही बताने वाले हैं कि खाद्य सुरक्षा हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है।
1: बिल्कुल श्रोताओ, हमारे भारत में अधिकतर लोगों के लिए केवल पेट भरने के लिए भोजन करना जरूरी होता है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन पेट भरने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस भोजन का सेवन हम कर रहे हैं क्या उसमें उचित मात्रा में पोषण, कैल्शियम, विटामिन है जो उसके स्वास्थ्य को स्वस्थ और सक्रिय बनाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और उसके पाचन तंत्र को भी मजबूत करेगा। इसलिए श्रोताओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, यानी कि आज ही के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है।
1: दोस्तों, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति ध्यान आकर्षित करना इस दिवस का उद्देश्य है, और खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, पता लगाने और प्रतिबंधित करने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कशिश कि भारत में घरेलू खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रोताओं, बड़े पैमाने पर तैयार किया गया खाद्य उत्पादन और उसकी प्रसंस्करण और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कशिश प्रौद्योगिकी में प्रगति, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होना, बेहतर क्रय शक्ति, बढ़ती उपभोक्ता की मांग ने कई प्रकार के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्माण किया है।
1: जी हाँ।
0: जिसकी सुरक्षा का आंकलन करना आवश्यक है श्रोताओं, क्योंकि भारत में बीते कुछ वर्षों में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता से संबंधित मामले बड़ी मात्रा में सामने निकल कर आए हैं कशिश।
1: जिसके कुछ कारणों से अगर श्रोताओं हम आपको रूबरू करवाएं, तो सबसे पहले आता है लोगों की बदलती जीवन शैली और खान पान की आदतों ने लोगों को घर से बाहर खाना खाने के लिए मजबूर कर दिया है।
0: बिल्कुल,
1: जहाँ बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और भोजन के बचने पर वहीं बासी भोजन दूसरे दिन भी उपयोग में लिया जाता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसी परिस्थिति में भोजन दूषित होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। जागृति जी, श्रोताओं, जैसे कई जगह ऐसा पाया गया है कि भोजन में या पेय पदार्थ में छिपकली और मेंढक जैसे मृत जीव हमें मिले हैं।
0: जी हाँ।
1: जो कि खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता के प्रति चिंता को और भी गहरा करते हैं।
0: जी हाँ। और श्रोताओं, आज के समय बाजार में कितने ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें मिलावट की जाती है, जिसे महीनों पहले पैक कर दिया जाता है, बिना किसी चिंता के ही वह खाद्य पदार्थ शुद्धता के मानक को प्राप्त कर रही है या नहीं।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ ये भी कारण है कि वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है श्रोताओं कि इसका असर खाद्य पदार्थों की शुद्धता और पौष्टिकता पर भी हो रहा है, क्योंकि कशिश वातावरण में प्रदूषण मिट्टी और पानी भी प्रदूषित, और किसानों के द्वारा भी उपयोग किया जाने वाले कीटनाशक और उर्वरक भी खाद्य सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। साथ ही श्रोताओं, खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट और रंगीन बनाने के लिए भी परिरक्षक और अन्य रासायनिक एजेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
0: जी हाँ।
1: जिसके कारण फूड पॉइजनिंग जैसे मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। आज जागृति जी।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, इन सभी कारणों की वजह से खाद्य सुरक्षा में उसकी गुणवत्ता के प्रति चिंता पड़ रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा में उसकी गुणवत्ता को पहले प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: खाद्य सुरक्षा की महत्ता भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी, जो कि भूखमरी, कुपोषण को खत्म करने की बात करता है।
1: जी हाँ जागृति जी। तो दोस्तों, बातें जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर ढेर सारी चली रही हैं। ये बातें निरंतर आगे भी आपसे ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और बात कर रहे थे इस खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर। यही बात करते हैं खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती। इससे पहले हम कारणों को जान रहे थे। अगर चुनौतियों पर बात करें कशिश, तो भारत में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता को कायम रखने के लिए सरकार के आगे कुछ बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसे खत्म करना होगा। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज भी भारत में हम कह सकते हैं कि कई मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कुपोषित हैं और ये पूरे विश्व का एक चौथाई है।
1: जी हाँ साथी श्रोताओं, लगभग कई प्रतिशत बच्चे भारत में लंबे समय से कुपोषण का शिकार हैं, जिसके लिए सरकार को अपने कार्यक्रम को अच्छे तरीके से कार्यान्वित करना होगा।
0: बिल्कुल,
1: दो देशों के बीच हो रहे युद्ध भी सरकार के लिए खाद्य सुरक्षा के प्रति एक चुनौती है, क्योंकि युद्ध से वैश्विक व्यापार भी प्रभावित होता है। जागृति जी,
0: बिल्कुल, और खराब मौसम की स्थिति भी खाद्य पदार्थ की उपज को कम कर देती है कशिश, जिसका प्रभाव खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता पर पड़ता है।
1: जी हाँ,
0: और हम बात करें तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 113 देशों में 71वें पर है, जो कि दर्शाता है कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में आज भी पीछे है, जिसे सरकार को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल, साथ ही भारत में रेडी वाले और फेरी वाले छोटे खाद्य सामग्री निर्माता बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि असंगठित खाद्य क्षेत्रों में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और देश की अधिकांश आबादी इन क्षेत्रों में भोजन करती है, इसलिए श्रोताओं, यह भी खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि इस असंगठित खाद्य क्षेत्रों को भी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण से दूर रखा गया है।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं, जैसे कि भारत में खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए प्रशिक्षण प्रयोगशाला की कमी है, तो उसे पूरी करनी चाहिए, और जहां जहां बने हुए तो वहां वहां खाद्य सुरक्षा को प्रयोगशाला में लाकर उसकी निगरानी करनी चाहिए।
1: जी हाँ।
0: और हम कह सकते हैं कि निजी प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला बहुत कम है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, भारत में खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता की अनिश्चितता लोगों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि भोजन की गुणवत्ता ही स्वस्थ शरीर के विकास की पुष्टि करती है। सरकार इस मुद्दों के प्रति अपने कार्य कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को भी कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा।
0: बिल्कुल कशिश, जैसे कि कोशिश करें श्रोताओं कि बाहर के खाने से परहेज करें। अगर हमारे साथ मजबूरी है कि हमें बाहर का ही खाना खाना है, तो पहले चेक करें कि बना हुआ खाना सही प्रकार से बना है या नहीं, उसी के बाद हमें खाना चाहिए।
1: बिल्कुल, साथ ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित आहार योजना बनाने का आप प्रयास करें, क्योंकि आहार योजना आपको उचित मात्रा में पोषण, कैल्शियम और विटामिन प्रदान करती है, जिसकी आपके शरीर को जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ श्रोताओं, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अपने किचन में खाने की चीजों को हमेशा ढककर रखें, क्योंकि खुला खाना चूहों, छिपकलियों, तिलचट्टों को निमंत्रण देता है और यही बीमारियों का कारण बनता है कशिश।
1: बिल्कुल,
0: और लोगों को उपभोग योग्य खाद्य पदार्थ लेते समय ये सुनिश्चित करना चाहिए श्रोताओं कि भोजन ताजा और स्वस्थ हो, और समाप्ति की तारीख भी हमें जांच कर लेनी चाहिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से बीमारी को रोकने में हमारी मदद करता है।
1: बिल्कुल, साथ ही श्रोताओं, देश के जागरूक नागरिक होने के नाते अगर हमें कहीं खाने में मिलावट देखने को मिलती है या फिर बाहर किसी रेस्टोरेंट और होटल में दूषित भोजन प्राप्त होता है, तो हमें अवश्य उपभोक्ता अदालत में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: जिससे वह अगली बार इस बात का ध्यान रखें।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं, ये कुछ बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा, और खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता के प्रति शुद्धता जरूरी है या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है दोस्तों। और आप समझ ही गए होंगे कि अगर खाद्य सुरक्षा में मिलावट हो गई दोस्तों, तो हमारा शरीर बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा।
1: बिल्कुल,
0: और काम करने के लिए शरीर को चलाना बहुत जरूरी है, इसीलिए ध्यान रखें दोस्तों, हमेशा खाद्य सुरक्षा के लिए कभी कोई भी चीज अगर हमें खानी है, बाहर जा रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। बाजार से कोई चीज ला रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट देख ले कि कब इसका एक्सपायर हो रहा है। ये सब चीजें छोटी मोटी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, जिससे हम हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं और हमारे देश को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, तो दोस्तों बातें जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर ढेर सारी हो चुकी है, और अब हम देख भी रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ।
1: तो दोस्तों विदा जरूर लेंगे, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोताओं, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमें आपकी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdhara.org,
1: radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दोस्त जागृति
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि भोजन मनुष्य की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, जिस प्रकार स्वच्छ वायु और शुद्ध जल जीवन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार सुरक्षित और पौष्टिक भोजन स्वस्थ जीवन का आधार है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आज के समय में केवल भोजन उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सुरक्षित शुद्ध और पोषण युक्त होना भी उतना ही जरूरी है। यही कारण है कि खाद्य सुरक्षा का विषय पूरे विश्व में महत्वपूर्ण बन गया है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी कि खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है और क्या फायदे हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम के पहले इस गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि अंजलि, गीत से पहले हमने विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, खाद्य सुरक्षा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना, जिससे वो स्वस्थ रहे, सक्रिय जीवन जी सके। लेकिन अगर भोजन दूषित होगा, मिलावटी या असुरक्षित होगा तो वो शरीर को पोषण देने के बजाय बीमारियों का कारण बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए श्रोताओं, खाद्य सुरक्षा केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास का भी आधार है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, विकास, कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता का आधार है। जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन नियमित रूप से उपलब्ध होता है, तब उसे खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है। दुनिया में आज भी जागृति जी, लाखों लोग भूख, कुपोषण और भोजन की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा केवल एक आवश्यकता नहीं है, बल्कि मानव जीवन का मूल अधिकार बन चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: खाद्य सुरक्षा का संबंध खेती, पर्यावरण, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास से भी जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य केवल भोजन की उपलब्धता से नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि भोजन सुरक्षित, पौष्टिक और सभी लोगों की पहुंच में हो।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए सुरक्षित भोजन बहुत जरूरी है। यदि भोजन में मिलावट हो और उसमें हानिकारक रसायन हो, वो स्वच्छता के अभाव में तैयार किया गया हो, तो अनेक बीमारियां जन्म ले सकती है।
1: जी जी।
0: श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि सुरक्षित भोजन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवाओं को ऊर्जा, एकाग्रता और कार्यक्षमता प्राप्त होती है अंजलि, जबकि बुजुर्गों को स्वस्थ जीवन जीने में सहायता मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा प्रत्येक आयु वर्ग के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। भोजन में हमें ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज प्राप्त होता है। यदि भोजन पर्याप्त और पौष्टिक नहीं होगा तो व्यक्ति बीमारियों का शिकार हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने पर लोग स्वस्थ रहते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वो बेहतर जीवन जी पाते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ कहना चाहेंगे जागृति जी, श्रोता साथियों से, कि भारत सहित कई देशों में कुपोषण एक बड़ी चुनौती है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में कुपोषण के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है।
0: जी हाँ।
1: जब सभी लोगों को पौष्टिक भोजन मिलता है तो कुपोषण, एनीमिया, कमजोरी और विकास संबंधित समस्याओं में कमी आती है। बच्चे देश का भविष्य है श्रोता साथियों। यदि बचपन में ही उन्हें उचित पोषण नहीं मिलेगा तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होगा।
0: बिल्कुल।
1: खाद्य सुरक्षा बच्चों को स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है।
0: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हम बताएं, आर्थिक विकास में योगदान होता है खाद्य सुरक्षा योजना। यानी कि श्रोता साथियों, खाद्य सुरक्षा का सीधा संबंध किसी देश की अर्थव्यवस्था से भी है।
1: बिल्कुल।
0: जब नागरिक स्वस्थ होते हैं तो उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और वे अधिक उत्पादक बनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इससे उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों में भी विकास होता है। दूसरी ओर यदि लोग असुरक्षित भोजन के कारण बार बार बीमार पड़ेंगे अंजलि, तो स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ता है और उत्पादन क्षमता घटती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा आर्थिक समृद्धि का भी एक महत्वपूर्ण आधार है।
1: जी
0: और
1: हाँ।
0: कहा भी गया है कि स्वस्थ नागरिक, मजबूत राष्ट्र खाद्य सुरक्षा का सबसे खास है। यानी कि श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आज खाद्य सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है खाद्य पदार्थों में मिलावट। दूध, मसाले, मिठाइयां, तेल और अन्य वस्तुओं में मिलावट की बहुत सारे मामले सामने आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मिलावटी भोजन अंजलि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे हम देखते हैं कि हमारा पेट संबंधी रोग हो जाते हैं, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, हमें कई सारी गंभीर बीमारियां हो जाती है। इसलिए मिलावट पर कठोर नियंत्रण और जन जागरूकता बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी बातें चल रही है खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर। तो ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी हमने गीत से पहले जाना कि किस तरीके से खाद्य सुरक्षा का महत्व हमारे जीवन में है और खाद्य सुरक्षा अपनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि किसान खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। वे दिन रात मेहनत करके अनाज, फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं। यदि किसानों को उचित मूल्य, सिंचाई, बीज, तकनीक और बाजार की सुविधा मिलेगी तो उत्पादन बढ़ेगा और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। इसलिए किसानों का सम्मान और सहयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की भी भूमिका होती है। सरकार कई प्रकार की योजनाएं और कानूनों के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास भी करती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर के भोजन योजना, पोषण अभियान और खाद्य गुणवत्ता की निगरानी, ये सारे कदम खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। साथ ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच और मिलावट करने वालों पर कठोर कार्रवाई भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: दुनिया में लाखों लोग भूख से जूझ रहे हैं अंजलि, जबकि दूसरी ओर बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: भोजन की बर्बादी खाद्य सुरक्षा के लिए श्रोता साथी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। बचा हुआ भोजन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करना होगा।
0: जी जी।
1: यदि समाज भोजन की बर्बादी रोक देगा तो खाद्य सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत किया जा सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा का पर्यावरण से गहरा संबंध है।
1: बिल्कुल,
0: यदि मिट्टी, जल और जैविकता सुरक्षित रहेगी तभी भविष्य में पर्याप्त खाद्य उत्पादन संभव होगा। इसलिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। श्रोता साथियों,

0: भोजन केवल एक वस्तु नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। जब समाज का हर व्यक्ति भरपेट और पौष्टिक भोजन प्राप्त करता है तब एक स्वस्थ खुशहाल और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है।
1: जी हाँ।
0: जागृति जी श्रोता साथियों से ये कहना चाहेंगे कि खाद्य सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, किसान, उपभोक्ता, सामाजिक संगठन और आम नागरिक सभी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें भोजन की बर्बादी रोकनी चाहिए, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए और पौष्टिक भोजन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि श्रोता साथियों खाद्य सुरक्षा किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक मजबूती की पहचान है। ये केवल भूख मिटाने का विषय नहीं है बल्कि मानव गरिमा, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस समाज में हर व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता है जागृति जी, वहाँ बीमारी कम होती है, शिक्षा का स्तर बेहतर होता है, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा का गहरा संबंध है। यदि जल, भूमि और वायु प्रदूषित होंगे तो खाद्य उत्पादन भी प्रभावित होगा। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना समय की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं अंजलि कि खाद्य सुरक्षा केवल एक सरकारी योजना या नीति नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक के स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन का आधार है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन हर व्यक्ति का अधिकार है। ये न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय प्रगति को भी गति देता है। आज अंजलि आवश्यकता है कि हम सभी खाद्य सुरक्षा के महत्व को समझें, भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दें, मिलावट का विरोध करें, भोजन की बर्बादी रोकें और किसानों का सम्मान करें। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस दिशा में अपना योगदान देगा तभी एक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण संभव होगा।
0: जी जी,
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि जीवन की ऊर्जा, स्वास्थ्य की नींव और विकास की शक्ति है। जिस दिन हर घर की थाली में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन होगा उस दिन भूख, कुपोषण, बीमारी पर बहुत बड़ी जीत होगी अंजलि।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, हम सुरक्षित भोजन अपनाएं, खाद्य संसाधनों का सम्मान करें और खाद्य सुरक्षा को जन जन का अभियान बनाएं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम खाद्य सुरक्षा को केवल सरकारी योजना के रूप में न देखें बल्कि इसे सामूहिक जिम्मेदारी माने, किसानों के परिश्रम का सम्मान करें, भोजन की बर्बादी को रोकें, पोषण के प्रति जागरूक बने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य संसाधनों का संरक्षण करें।
1: जी हाँ।
0: जब हर घर में भोजन की सुरक्षा होगी तभी सच्चे अर्थों में स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। श्रोता साथियों, अन्न का करें सम्मान तभी बनेगा स्वस्थ हिंदुस्तान। हर थाली में पोषण भरपूर, खाद्य सुरक्षा से होगा भविष्य मजबूत और जरूर।
1: बिल्कुल। तो इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम के साथ अंजलि हम विदा लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को हम कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाना चाहेंगे।
0: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
4: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने अपनी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है, ई अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: बहन बोनो अनस के साथ कार्यक्रम घूमर टकी अमे पूर्ण सूटा। आशा कर हूँ कि आज कार्यक्रम में हमारी आपने की जी भी बातें रही है आपने कमी होगा, क्योंकि अभी टाइम थे गयो है अपने अनस कार्यक्रम थकी सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा पण साथे पहले अपने भाई बहनों ने अपने कार्यक्रम नु पतु बताड़ दो, ताकि आज नो आ कार्यक्रम एना ने केवू लाग्यू एनी बारे में राय सुझाव अपने ने आली सके अपने अणापता माते।
1: हवे बहन बहनों अमारो पतु है कार्यक्रम घूमर वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारो पिनकोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बलदे आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234।
0: तो भाईन बोनू फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक ना विषय ने हाते तारुदी
1: राम राम राम राम, राम, राम।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अंजलि पारेश्वर। स्वागत करती हूं आपका कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, जहां हम बात करते हैं उन सपनों की जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं और उन हौसलों की जो हमें मंजिल तक पहुँचाते हैं। आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है, दूसरों की हंसी से अपने सपने मत छोड़िए। जी हाँ, कई बार हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ लोग अलग करना चाहते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने सपनों की बात लोगों से करते हैं तो कुछ लोग हंसने लगते हैं। कुछ कहते हैं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतना बड़ा सपना मत देखो, तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे उनकी बातें हमारे मन में घर करने लगती है और हम अपने ही सपनों पर शक करने लगते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, सचमुच दूसरों की हंसी हमारे सपनों की कीमत तय कर सकती है? तो आज कार्यक्रम में जानेंगे इस विषय पर हम ढेर सारी बातों को। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि दूसरों की हंसी से अपने सपने मत छोड़िए। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सामान्य रास्ते से हटकर कुछ नया सोचता है तो अक्सर लोग उसे समझ नहीं पाते। यदि कोई गाँव का युवक कहे कि वह अपना व्यवसाय शुरू करेगा तो कुछ लोग कहेंगे ये भी कोई काम है क्या। यदि कोई लड़की कहे कि वह अधिकारी बनना चाहती है तो कुछ लोग हंसकर कह देते हैं कि इतना आसान नहीं है। यदि कोई किसान नई तकनीक अपनाने की बात करे तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। दरअसल लोग अक्सर उसी चीज पर हंसते हैं श्रोता साथियों, जिसे वे समझ नहीं पाते। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब लोग आपके सपने पर हंस रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका सपना साधारण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दूसरों की हंसी उतनी ही नुकसान नहीं पहुंचाती है जितना हमारा उस हंसी पर विश्वास कर लेना हमें नुकसान पहुंचाता है। जब हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि लोग सही कह रहे हैं, तब हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। हम कोशिश करना छोड़ देते हैं और हम ये सोचते हैं कि शायद मैं सचमुच योग्य नहीं हूँ, शायद मेरा सपना बहुत बड़ा है, शायद मुझे सब छोड़ देना चाहिए, और यही सबसे बड़ी हार होती है। जी हाँ दोस्तों, हार तब नहीं होती है जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, हार तब होती है जब आप खुद पर विश्वास खो देते हैं। इतिहास हमारा जो है ना दोस्तों, वो ऐसे लोगों से भरा हुआ है कि जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े बदलाव किए हैं, और उनकी शुरुआत मजाक उड़ाने से ही हुई थी। जब किसी ने कहा होगा कि इंसान आसमान में उड़ सकता है तो लोग हंसे होंगे। जब किसी ने कहा होगा कि एक छोटा सा उपकरण पूरी दुनिया को जोड़ देगा, तब भी लोग हंसे होंगे। लेकिन जिन्होंने अपने सपनों को लोगों की हंसी से बड़ा माना है, वही आगे चलकर इतिहास बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिन सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं, उनमें से अधिकांश ने कभी न कभी उपहास, आलोचना और अस्वीकार का सामना किया होगा। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि आज कार्यक्रम में मैं ये कैसे बातें कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारे साथ यही होता है। हम असल जिंदगी में अक्सर कुछ सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, और जब ये बातें हम किसी अन्य व्यक्ति से साझा करते हैं तब हमेशा ही एक विरोधी जवाब हमारे सामने आता है। इसमें क्या रखा है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें आगे कोई फील्ड ही नहीं है।

ऐसा करोगी और कुछ सही नहीं हुआ तो लोग तुम पर हंसेंगे। ऐसी बातें जब हमारे मन में आती है तब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उससे पहले विश्वास अपने ऊपर से खो देते हैं, और जब हम विश्वास को खो देते हैं दोस्तों तो हम उस कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और हमारा जो सपना है वो टूट जाता है। तो जैसा कि कार्यक्रम में मैं बहुत अच्छे विषय पर आपसे बातचीत कर रही हूँ, आगे मैं एक प्यारे से कहानी के माध्यम से इस विषय को आपको समझाना चाहूंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान रहे थे कि किस तरीके से इतिहास जो है वो ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनकी हर बात का शुरुआत में मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने खुद के सपनों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा और अपने सपनों को पूरा किया। एक छोटी सी कहानी है कि एक छोटे से गांव में रहने वाला मोहन पढ़ाई में सामान्य था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत थी, लेकिन उसका सपना था कि वह शिक्षक बने। जब उसने अपनी इच्छा लोगों से बताई तो कई लोग हंसने लगे। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, किसी ने कहा कि इतनी बड़ी बातें मत करो, किसी ने कहा पहले अपनी हालत तो देखो। मोहन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा। वह रोज पढ़ता रहा, कई बार असफल हुआ, परीक्षा में भी एक दो बार सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। कुछ वर्षों बाद वही मोहन शिक्षक बन गया। एक दिन वही लोग उसके पास अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सलाह लेने आने लगे। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि लोगों की हंसी अस्थायी थी, लेकिन उसका सपना जो था वो स्थायी था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लोगों की राय बदलने में समय नहीं लगता है, लेकिन सपनों को पूरा करने में उससे भी ज्यादा धैर्य लगता है। क्योंकि सपने देखना आसान जरूर है, लेकिन उन्हें पूरा करना मेहनत मांगता है। इस रास्ते में आलोचनाएं भी मिलती हैं, असफलताएं भी मिलती हैं, निराशा भी मिलती है और लोग हंसते भी हैं। लेकिन यही वह समय होता है दोस्तों जब हमें अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। यदि हर व्यक्ति लोगों के डर से अपने सपने छोड़ देता है तो दुनिया में कोई भी काम कभी नहीं होता। इसलिए किसी ने कहा है कि जिस रास्ते पर कोई नहीं चलता उसी रास्ते पर चलने वाले लोग नई मंजिल बनाते हैं। इसलिए दोस्तों खुद को मजबूत करने की जरूरत है। हम खुद को मजबूत कैसे बनाएं? तो हमें अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना है। जब भी कोई आपका मजाक उड़ाए तो अपने सपने को याद कीजिए। खुद से पूछिए कि मैंने यह सपना क्यों देखा था। दोस्तों यकीन मानिए, जब ये सवाल आप खुद से करते हैं तो ये सवाल आपको मजबूत बना देगा। इसी के साथ सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको हौसला दें। हर समय आलोचना सुनना मन को कमजोर कर देता है, इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। छोटी छोटी सफलता को पहचानिए, यानी कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने में सफलता मिलती है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल तक हमें पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब भी हम कुछ सपना देखें तो सीधे बड़ा प्राप्त करने की ना सोचें। छोटी छोटी चीजों से हमें शुरुआत करने की जरूरत है। जो व्यक्ति सीखता रहता है वह आगे अवश्य बढ़ता है। इसलिए ज्ञान और कौशल को आत्मविश्वास के साथ हमें मजबूत बनाने की जरूरत है। और कार्यक्रम के माध्यम से मैं युवा साथियों को यह संदेश देना चाहूंगी कि युवा साथियों, आपका सपना चाहे नौकरी का हो, व्यवसाय का हो, पढ़ाई का हो, खेल का हो या समाज सेवा का, उसे दूसरों की हंसी के कारण मत छोड़िए। याद रखिए कि आज जो लोग आपकी कोशिशों पर हंस रहे हैं कल वही आपकी सफलता की कहानियां सुनेंगे। दुनिया हमेशा परिणाम दिखती है, लेकिन संघर्ष केवल वही व्यक्ति जानता है जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा होता है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि जीवन में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके सपनों की कीमत नहीं समझेंगे। कुछ लोग आपको रोकेंगे, कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपकी कमियां गिनवाएंगे, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आपकी जिंदगी लोगों की राय से नहीं चलेगी, आपके विश्वास से चलेगी। सपने इसलिए नहीं छोड़े जाते दोस्तों कि लोग हंस रहे हैं। सपने इसलिए पूरे होते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति उन हंसियों के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। जब भी कोई आपके सपनों पर हंसे तो निराश मत होइए। उस हंसी को अपनी मेहनत का ईंधन बनाइए, उसे अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाइए। क्योंकि दूसरों की हंसी कुछ समय के लिए सुनाई देती है, लेकिन अपने सपनों की आवाज पूरी जिंदगी साथ रहती है। इसलिए लोगों की हंसी नहीं, अपने दिल की आवाज सुनिए, हौसला बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों की उड़ान कभी मत रोकिए। तो दोस्तों यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करती हूँ कि आज हमारे कार्यक्रम में जो आपसे बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे कि तुम्हारी राह कठिन रहेगी, लेकिन अपने मन की सुनना मंजिल खुद आकर मिलेगी। जब जब दुनिया ने रोका है, तब तब इतिहास बना है। जो डर कर पीछे हट जाते हैं, उनका सपना कहाँ खिला है। हंसी उड़ाना आसान बहुत है, सपनों को जीना मुश्किल है। जो गिरकर फिर उठ जाते हैं, उनका जीवन ही मंजिल है। छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, रोज नया विश्वास जगाओ। आंधी आए, तूफान आए, फिर भी अपना दीप जलाओ। कल जो तुम पर हंसे होंगे, कल ताली भी बजाएंगे। आज तुम्हें जो कम समझे, कल मिसाल तुम्हें ही बताएंगे। मत रुकना दोस्तों लोगों की बातों से, मत झुकना झूठी हारों से। अपने सपनों को थामे रखना उम्मीदों के उजियारों से। याद रखो यह बात हमेशा, जीवन का यही सार है। सपने सच होते हैं उनके जिन्हें खुद पर एतबार है। जी हाँ, हंसी उड़ाने वालों की आवाजें समय के साथ खो जाती हैं, लेकिन सपनों के लिए की गई मेहनत एक दिन कहानी बन जाती है। श्रोता साथियों, अब विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है विश्व कीर्ति दिवस को लेकर। जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से कि आज यह दिवस हम क्यों मनाते हैं और इस दिवस का क्या इतिहास है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम कीट शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े, मच्छर, मक्खियां, दीमक और चूहे जैसी चीजें आती हैं। लेकिन श्रोता साथियों, ये छोटे जीव दिखने में भले ही मालूम ही लगे लेकिन कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए इनके बारे में जानकारी और सही प्रबंधन हमारे लिए बेहद आवश्यक है। तो जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि कीट दिवस का क्या महत्व है और कृषि में कीटों का क्या प्रभाव देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्या ना श्रोता साथियों को पहले एक प्यारा सा गीत यहाँ पर हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हम कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि कशिश, हमने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं विश्व कीर्ति दिवस के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, विश्व कीर्ति दिवस की शुरुआत लोगों को ये समझाने के लिए की गई कि कीट नियंत्रण केवल फसल बचाने का काम नहीं है, बल्कि ये मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ विषय है।
1: बिल्कुल,
0: यदि कीटों का नियंत्रण सही समय पर न किया जाए तो वे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, खाद्यान्न भंडारण को प्रभावित कर सकते हैं, कई प्रकार की बीमारियां फैला सकते हैं, आर्थिक हानि का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, कीट प्रबंधन को केवल एक कृषि कार्य न मानकर समाज और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ अनेक प्रकार की कीट भी हमारे आसपास मौजूद रहे हैं। श्रोता साथियों, कुछ कीट पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ कीट जो हैं वो मानव स्वास्थ्य, खाद्य पदार्थों और कह सकते हैं कि संपत्ति के लिए गंभीर खतरा बन जाते हैं। ऐसे में श्रोता साथियों, मच्छर, दीमक, खटमल और तिलचट्टे जैसे जो कीट है वो अनेक बीमारियों को फैलाने के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी पहुंचाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि इन्हीं समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व कीट दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो इस कीट दिवस के महत्व को लेकर क्या कहना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो सर नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
3: जी धन्यवाद।
0: सर, जैसा कि आज 6 जून का दिन है और आज के दिन हम विश्व कीट दिवस मनाते हैं
3: जी।
0: तो कार्यक्रम में आप सबसे पहले हमें यही बताइए कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है और इस दिवस का इतिहास क्या है।
3: जी, तो देखिए, हम विश्व कीट दिवस की हम बात कर रहे हैं तो बता दें कि जो छोटे जीव होते हैं धरती के एक महान रक्षक होते हैं।
0: बिल्कुल,
3: और कीट है जो जो प्रकृति है उसके अदृश्य नायक है। तो इसमें आप देखेंगे कि कीट जो केवल छोटे जीव नहीं है बल्कि धरती पर जीवन चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
0: बिल्कुल,
3: एक शक्ति है, इसके बिना धरती पे बहुत सारे संकट पैदा हो सकते हैं। इसके साथ ही इनके बिना प्रकृति का संतुलन है और जो जीवन चक्र है वो भी अधूरा रह जाता है।
0: बिल्कुल,
3: साथ में हम बात करते हैं जैसे जंगल, खेत, बगीचे और जो जल स्रोत है इनकी सेहत का ध्यान ख्याल रखने में इन कीटों का बहुत बड़ा योगदान होता है।
0: बिल्कुल,
3: तो इस तरह से जो है कीट हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि जैसे मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, या जो प्रांगण करता है कीट जो फसलों को प्रांगण और उत्पादन बढ़ाते हैं, पहला। दूसरा ये है कि हमारे भोजन में शामिल जो फल और सब्जियां होता है तो इन पर काफी, इनका जो ग्रोथ होता है, इनका पोषण होता है, वो इन पर काफी निर्भर करता है।
0: बिल्कुल,
3: इसके साथ में जो है कि जैसे हमारे मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी का पोषण की जब हम बात आती है तो कीटों का जो है इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है।
0: जी जी।
3: कि उसको पौष्टिक बनाना, अगर हम इनको धीरे धीरे खत्म कर देंगे या ये खत्म हो जाएंगे पृथ्वी से, हमारे पर्यावरण से, तो बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है।
0: बिल्कुल,
3: तो इसमें क्या है कि कीटों का जो पोषण युक्त भोजन है वो भी प्रभाव हो सकता है, प्रभावित होता है। क्योंकि जब आप बात करते हैं कि जैसे हम बहुत सारे रासायनिक का जो उपयोग करने लगे हैं, इसके साथ ही जो है हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो जब उर्वरकता की हम बात करते हैं तो उसमें कीटों का बहुत बड़ा महत्व होता है और वो बहुत सहायता करते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। तो इस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि मिट्टी को हम जीवंत और उपजाऊ की बात करते हैं तो इनका जो इनकी भागीदारी है, इनका कार्य है जो ये मिट्टी के अंदर करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। जैसे कि दीमक है, भंग है, और जो जो ये क्या करते हैं कि जैसे सूखे पत्ते और ये आपके जो अवशेष होते हैं खेती बाड़ी के ऊपर, उनको ये वापस जो है जो जैविक रूप से उसको बदलते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं।
0: जी,
3: और
0: जी।
3: वो जो है प्रोसेस करने के बाद में जो तैयार होता है तो वो काफी महत्व देता है हमारी मिट्टी को, जिसमें इसका जो उर्वरकता के साथ आपका उत्पादन बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
3: आपकी जो फल सब्जियां या अनाज होगा वो काफी पौष्टिक होगा और वो स्वस्थ होगा।
0: बिल्कुल सर।
3: इसके साथ ही आप देखेंगे कि अगर मिट्टी कि हम बात करते हैं कि मिट्टी स्वच्छ होगी या उर्वरक होगी तो आपका भोजन भी उतना ही पौष्टिक होगा, जिससे आपके बच्चे, आपके परिवार, इनकी जो पोषण सुरक्षा है वो सुनिश्चित होती है।
0: बिल्कुल।
3: तो इसलिए हमारी जो पृथ्वी पर जो कीट हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है। ये सिर्फ यही नहीं, ये समझिए आप कि जो जैव विविधता है और जो जीवन चक्र है उसके लिए भी महत्वपूर्ण कड़ी है।
0: बिल्कुल सर,
3: क्योंकि आप देखते हैं कि कीट अनेक पक्षी होते हैं, जैसे मेंढक है, मछलियां हैं, छोटे जीवों का जो भोजन है वो कीट होते हैं।
0: बिल्कुल,
3: क्योंकि अगर पानी मछली रहती है तो क्या खाती है? कीट,
0: कीट ही खाती है। बिल्कुल,
3: इसी तरह मेंढक है। तो ये सारी जो है इनके लिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे पक्षी आपने देखे होंगे कि आपके खेत के आसपास, आपके आसपास, कि वो कीटों को खाते हैं, तो ये उनका भोजन का भी काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
3: अगर ये नहीं होंगे तो इनके बिना जो खाद्य श्रृंखला है वो टूट सकती है और जो जीवों का अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है।
0: बिल्कुल,
3: जैसे अगर कीट नहीं होंगे, सोचो आपको तालाब है, अगर उसमें कीट नहीं है, अगर कीट नहीं है तो उन मछलियों को भोजन कहाँ से मिलेगा? और भोजन नहीं मिलेगा तो मछलियों की प्रजाति वो खत्म हो जाएगी।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण के लिए कीटों का बहुत ज्यादा महत्व है, साथ ही ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कीट जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पर्यावरण से लेकर हमारे जीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो जैसा कि सर आप बातें कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों को बहुत अच्छी बता रहे हैं, हमारी बातें कार्यक्रम में आपसे निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
3: जी

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम में आज हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और उनसे हम जान पा रहे हैं कि आज विश्व किड दिवस क्यों मनाया जाता है और इस दिवस का क्या महत्व है। यहीं सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कीटों का जो ये प्रकोप है वो क्यों बढ़ रहा है और साथ ही इन कीटों का संरक्षण कैसे करें। हम देखते हैं कि प्रकृति के लिए कुछ ऐसे मित्र कीट होते हैं जिनका संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: देखिए, इसमें यह है कि जो कीटों पर जो बढ़ता संकट है उसके बहुत मेनर कारण है। आप देखेंगे, एक तो रासायनिक जो दवा और जो रासायनिक खाद का उपयोग है वो अंधाधुंध हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा है कि जो जंगल और प्राकृतिक जो उनके आवास थे, उनके घर थे, उनका विनाश हो रहा है।
0: जी जी।
1: देख रहे हो आप, बहुत सारे जंगल कट रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनपे कब्जा हो रहा है, उनपे माइनिंग हो रही है, तो उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं रही धीरे धीरे। इसके साथ में सबसे बड़ा है कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनका भी स्वास्थ्य खराब होता है, उन पे भी प्रभाव पड़ता है प्रदूषणों का।
0: जी जी।
1: तो अभी देख रहे हैं कि अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो भी जलवायु परिवर्तन काफी मतलब ज्वलंत से है, जिसपे हम देख रहे हैं कि उसके कारण बहुत सारे संकट पैदा हो रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उसके कारण भी कीटों का विनाश हो रहा है, वो खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ ही जैसे एकल फसल जिसको हम मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं, तो उस आधारित जो खेती है उसके कारण भी ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्योंकि होता क्या है कि आप एक ही एकल फसल बोएंगे एक ही प्रकार की, तो उसके उसके जो उनको जो चाहिए होता है पोषण या उनको रहने के लिए जो उस मिट्टी में जगह चाहिए होती है, वो शायद उस एक ही क्रॉप की वजह से वो नहीं रह पाते हैं और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारे क्षेत्र की बात करें तो ज्यादातर आप रबी खरीफ देखोगे तो कई खेत ऐसे होते हैं जहाँ पे एक ही फसल बोते हैं, जिसके कारण उनको पोषण नहीं मिल पाता है, उनका खान पान नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो मिट्टी से खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से उनके ऊपर संकट आ रहा है। और ये जो लाभकारी कीटों की संख्या है, जो आप बोलो मित्र कीट जिसको हम बोलते हैं, उनकी संख्या में धीरे धीरे बहुत गिरावट आ रही है। और इसके कारण जो पर्यावरण और कृषि है दोनों के लिए चिंता का विषय है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि दोनों के लिए जरूरी है। अगर दूसरी हम बात करें कि इनके संरक्षण के लिए क्या करें, तो देखिए संरक्षण के लिए हम जो है उनके लिए कोई विशेष कुछ करना नहीं है आपको, कि आपको अलग से कुछ करना पड़े। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि परंपरागत खेती है उसको बढ़ावा देना, तो परंपरागत खेती में जैसे आप गोबर खाद के माध्यम से करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज है वो गोबर खाद खेतों में डालते थे, तो वो लगभग 7 से 8 महीने पहले डाल देते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या होता था, कीट धीरे धीरे धीरे धीरे उस खाद को खाकर उसको प्रोसेस करते थे, क्योंकि केचुए हमारी मिट्टी में रहते हैं, दीमक है, वो उसको एकदम जो खा के उसको निकालते हैं, तो वो मिट्टी के लिए बहुत पौष्टिक होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें परंपरागत जो खेती है, जैविक खेती है, उसको अपनाना चाहिए। दूसरा है कि रासायनिक है जिनका उपयोग लगातार बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल।
1: हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में। तो हमें सोचना होगा कि अगर हमारे जलवायु परिवर्तन को रोकना है और हमारी मिट्टी को पौष्टिक बनाना है, तो हमें रासायनिक का उपयोग बंद करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: और बहुत कम उपयोग करें इसका, ताकि उनका वो सुरक्षित रह सके। इसके साथ में आप देखेंगे कि जैसे हम बात करते हैं हमारे क्षेत्र में हांगणी, और जैसे बाकी जगह इसको बोलते हैं मिश्रित क्रॉप या मिश्रित फसल, तो हांगणी को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि हांगणी में हम 5-7 प्रकार की जो है क्रॉप लगाते हैं, फसलें लगाते हैं, जिससे जो जो प्रकार का कीट होता है उनकी डाइवर्सिटी जितनी होती है, जितनी विविधताएं होती है कीटों की, उनको वहां से पोषण मिलता है और वो आपकी मिट्टी में जिंदा रहेंगे लंबे समय तक। इसके साथ ही आप ये कर सकते हो कि पोषण संवेदी खेती की हम बात करते हैं, तो पोषण संवेदी खेती का सीधा मतलब यही होता है कि आप बिना रासायनिक की खेती करें, आप परंपरागत खाद बीजों का उपयोग करें, ताकि उन वो कीट है वो सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से हम इनका संरक्षण करते हैं। इसके साथ में हम बात करते हैं जैसे परंपरागत ज्ञान।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे जो बुजुर्ग है उनके पास में उनके संरक्षण के लिए बहुत अच्छा ज्ञान हुआ करता था, और उनको पता था कि कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है और किस तरह से उसको जैविक तरीके से परंपरागत तरीके से उसको भगाना है। उनका उद्देश्य मारना बिल्कुल नहीं होता था।
0: बिल्कुल।
1: उनका मारना बिल्कुल भी नहीं होता था, ये होता था कि ये कीट यहाँ से कहीं और चला जाए, ताकि फसल को नुकसान ना हो, ना ही वो मरे। लेकिन अभी आप अगर रासायनिक की बात करो सीधा डायरेक्ट वो खत्म हो जाता है, लेकिन पहले इस तरह से तो उन जो प्रथाएं थी, जो संस्कृति थी, जो ज्ञान था, उस ज्ञान को वापस से हम बुजुर्गों के साथ मिलकर लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अगर हमें इन कीटों को बचाना होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो कीट हम बचाएंगे तो हमारा पर्यावरण है उसके लिए महत्वपूर्ण है और मानव जीवन के लिए भी कीट महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज ये विश्व कीट दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि किस तरीके से हम हमारे पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए जो कीट उपलब्ध है उनका संरक्षण करें और किस माध्यम से हम ये प्रयास कर सकते हैं। तो बातें कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है और हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है कि बातचीत के बीच बीच में हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। तो क्यों ना कशिश हमारे श्रोता साथियों को हम एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
2: जी हाँ दिलेश जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: 멋쩍어 단경 갈아요.
1: 몸벌이 가도 없니?
2: 스팅 에너지.
3: 뉴 스팅 클래식 킥. 에너지즈.

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमारे बीच में विशेषज्ञ के तौर पर मांगेलाल जी जुड़े हुए थे, उनके माध्यम से कशिश हम ढेर सारी बातों को जान पाए। इसी बीच कार्यक्रम में हमारे साथ एक और विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम कार्यक्रम में उनका स्वागत करना चाहेंगे। मैम नमस्कार।
1: नमस्ते
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में। जैसा कि मैम आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं और आज हम देख रहे हैं कि विश्व किड दिवस हम मना रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस विषय पर ढेर सारी जानकारी तो मैं आपसे जरूर लूंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी, सभी को नमस्ते। मेरा नाम सृष्टि है और मैं समुदाय के साथ में बच्चों के बीच में और समुदाय की महिलाएं पुरुष जो खेती को लेकर काम करते हैं, समुदाय में जागरूकता की कमी है, किस तरह से हम लोग जागरूक हो सकते हैं, बच्चे शिक्षा से जुड़ सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर, ये सभी कार्य मैं समुदाय में रहकर उनकी समस्याओं को जानती हूँ और उसके साथ में उनका निवारण को लेकर कार्य करती हूँ।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम कार्यक्रम में आपने आपका परिचय हमें बताया, यही अब सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि विश्व किड दिवस क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: बिल्कुल। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो विश्व किड दिवस 6 जून को मनाया जाता है, लेकिन ये हर वर्ष ही मनाया जा रहा है, जो कि 2017 से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से था। कीट यानी कि छोटे कीड़ों के रूप में है, जिसमें हम देखें कि कीट हमें नजर नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को, हमारी कृषि को, हमारे पर्यावरण को, हमारे खाद्य सुरक्षा को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके साथ ही अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें कि कीट के तौर पर मच्छर को लेते हैं, तो मच्छर घूमते तो आसपास बहुत सारे हैं, लेकिन ये हमें अनेक बीमारियां भी फैलाते हैं, जिसमें डेंगू हो गया, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इस तरह की बीमारियों को ही फैलाते हैं। विश्व स्तर पर हर साल लाखों लोग ऐसी बीमारियों से जूझते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से कीटों के कारण ही होती है। तो इसलिए हमें ये केवल कीटों से बचने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ये भी देखना होगा कि हम कितने जिम्मेदार तौर पर इन चीजों का प्रबंधन करते हुए इन कीटों से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए विषय जो है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है?
1: यदि देखा जाए तो महिलाएं परिवार की संरक्षक है, वो स्वास्थ्य को लेकर अपने परिवार के लिए जिम्मेदार है, है ना। तो घर की सफाई देखा जाए, या भोजन तैयार करना, पानी की व्यवस्था करना, बच्चे बुजुर्गों की देखभाल करना, इन सभी जिम्मेदारियों में महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि घर में मच्छर बढ़ रहे हैं, भोजन खुला रखा जा रहा है, आसपास गंदगी है, तो इसका असर पूरे परिवार पर, उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। बीमारी होने पर बच्चों की देखभाल का अतिरिक्त बोझ भी महिलाओं के ऊपर ही आ रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए हमें महिलाओं को ये जागरूक होने की आवश्यकता है कि इन चीजों के पीछे या इन बीमारियों के पीछे क्या कारण है। तो कीटों के बारे में जानकारी रखना, बचाव रखना, इनके उपाय, इनका प्रबंधन रखना बहुत जरूरी है, जिसके

0: पूरे परिवार और समुदाय इसके कारण सुरक्षित रह पाए।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि क्या सभी कीट नुकसानदायक होते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि सभी कीट जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो क्या ये सोच सही है?
0: देखिए, हमारे आसपास के वातावरण में कई प्रकार के कीट हैं, है ना? तो लेकिन कुछ कीट हमारे स्वास्थ्य को और हमारी आजीविका को विशेष रूप से, महत्वपूर्ण रूप से हानि पहुंचाते ही हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मच्छरों को लेकर। अगर मच्छरों की बात करें तो ये डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, इस तरह की गंभीर बीमारियां तो फैलाते ही हैं। अगर मक्खियों की बात करें तो ये कूड़े और गंदगी में बैठती है, जिसके कारण ये भोजन पर बैठ के उनको रोगग्रस्त करती है। कॉकरोच, जो कि किचन में, रसोई में हम लोग आसानी से देख लेते हैं, क्योंकि ये खुले बर्तन रहते हैं, इसके साथ ही पानी भरा हुआ है या फिर खाना है जो कि ढका हुआ नहीं है, ये उसमें जाकर उसको रोगग्रस्त करते हैं। चूहे हैं जो कि अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। दीमक हैं जो लकड़ी के सामानों को, घरों की जो संरचना है या खेती से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान को पहुंचाते हैं। तो इन कीटों से होने वाले नुकसान केवल आर्थिक नहीं होते हैं, बल्कि हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारा परिवार है, उसके जीवन पे, उनकी गुणवत्ता पर, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते ही हैं।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि सभी कीट जो हैं वो नुकसानदेह नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कीट ऐसे होते हैं जो रोगग्रस्त होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही मैम, बरसात के मौसम में विशेष सावधानी रखने की क्यों जरूरत है, और महिलाओं को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जी, तो बात करते हैं बरसात के मौसम की। बरसात का मौसम इस प्रकार का है जिसमें हम बात करते हैं मच्छर, तो वहाँ पर मच्छरों का प्रजनन सबसे अनुकूल होता है। यानी कि हम देखेंगे कि हम घर के बाहर बर्तन खुले रखते हैं, या फिर हमारे टायर हैं, कूलर हैं, उसके अंदर पानी पड़ा रहता है, और पानी की जो टंकियां हैं वो भी कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको ढकते नहीं हैं, तो जिसके कारण मच्छर बहुत तेजी से पनपते हैं। अगर हम देखभाल की बात करें तो महिलाओं को यह आवश्यक है कि वो कम से कम ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पानी इकट्ठा है उसकी जांच करें, पानी की टंकियों को ढककर रखें, कूलर का पानी है या फिर किसी बर्तन में पानी काफी समय से पड़ा हुआ है तो उसको बदलता रहना बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को भी बारिश के मौसम के अंदर हम लोग पूरे कपड़े पहनाएं, जिसके कारण मच्छर उनको नहीं नुकसान पहुंचाएं, और मच्छरदानी का उपयोग करना भी जरूरी है। यदि गांव में कहीं नालियां हैं जो कि खुली पड़ी है और काफी टाइम से गंदा पानी उसके अंदर जमा है, तो हमें सामूहिक रूप से उसकी सफाई को लेकर भी पहल करना आवश्यक है।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो जैसा कि कशिश मैम से हमारी कार्यक्रमों में बहुत अच्छी बातें चल रही है कि जिस तरीके से विश्व कीट दिवस मनाया जाता है और महिलाओं के लिए यह विषय जो है वो किस तरीके से विशेष महत्वपूर्ण है।
2: बिल्कुल,
1: बातें आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना हम कार्यक्रम के माध्यम से एक प्यारा सा गीत हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
2: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारे सृष्टि मैम जुड़े हुए हैं और उनसे हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे हैं कि आज का ये जो दिवस हम मना रहे हैं उसका क्या महत्व है। यही मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाएं जो है वो समुदाय स्तर पर क्या ऐसे योगदान दे सकती है और इसमें अपनी क्या भूमिका निभा सकती है।
1: यदि हम बात करें महिलाओं में परिवर्तन है ना, तो महिलाएं परिवर्तन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यदि एकजुट होके वो काम करेगी तो कहीं ना कहीं इस चीज का इफेक्ट जो है वो समुदाय में देखने के लिए मिलता है। यदि गांव की महिलाएं मिलकर स्वच्छता अभियान चलाए या फिर सफाई को लेकर जागरूक हो, नियमित सफाई दिवस आयोजित करे या अपने घर के आसपास का वातावरण स्वच्छ रखे, पानी जमा होने पर स्थानों की पहचान करे और लोगों को जागरूक करे, तो पूरे गाँव की स्वास्थ्य जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो सकती है। स्वयं सहायता समूह है या हमारे गांव के अंदर ऐसे समूह भी हैं जो कि महिलाओं के समूह बने हुए हैं, बच्चों के समूह बने हुए हैं, विद्यालय में प्रबंधन समिति है और गांव में ग्राम सभाएं भी होती है। तो ये इस प्रकार के मंच हैं जहाँ पे महिलाएं निर्णय लेकर एक नेतृत्व की भूमिका में आकर लोगों को जागरूक कर सकती है और एक पहल को अपना सकती है जिससे कि एक परिवर्तन समुदाय के अंदर, समाज के अंदर और परिवार के अंदर देखा जा सकता है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यही अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वैज्ञानिक कीट प्रबंधन क्या है। आजकल वैज्ञानिक कीट प्रबंधन की बात बहुत ज्यादा होती है, तो आप हमारे श्रोता साथियों को सरल भाषा में समझाइए कि इसका क्या अर्थ है।
1: बिल्कुल, तो यदि हम बात करें वैज्ञानिक कीट प्रबंधन की, तो बिना सोचे समझे हम कई बार कीटों को लेकर या फिर हम देखते हैं कि कीट ज़्यादा बढ़ गए हैं घर के अंदर तो हम उसके अंदर दवाई छिड़काव करते हैं, है ना। तो कीटनाशक का उपयोग आवश्यक नहीं है। अगर उसकी समस्या, उसकी जड़ को हम पहचान लें तो हम उसका कीटों को डायरेक्टली भी हम उसको नाश कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले समस्या का कारण को जानने की आवश्यकता है। यदि मच्छर है तो देखें कि पानी कहाँ पर जमा है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम मक्खियों की बात करें तो सफाई किस प्रकार से हमारे घर के अंदर है, उसकी स्थिति क्या है, उसको जानना आवश्यक है।
0: बिल्कुल,
1: यदि चूहे हैं भोजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अनाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमारा जो भंडारण है या हमारे अनाजों को हम कैसे रख रहे हैं उसको भी हमें देखने की आवश्यकता है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: पहले रोकथाम के उपाय को अपनाना हमें जरूरी है, फिर आवश्यकता पड़ने पर हमें सुरक्षित और उचित तरीके से नियंत्रण करना है। यह तरीका हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से भी अधिक सुरक्षित और प्रभावी है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। जैसा कि आपने वैज्ञानिक कीट प्रबंधन क्या है इसके बारे में हमें बताया है, तो कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी बातें हो गई हैं, तो अंत में आप हमारी महिलाओं को और हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि स्वस्थ परिवार की शुरुआत घर से होती है और घर की सबसे बड़ी शक्ति महिला ही है।
0: बिल्कुल,
1: स्वच्छता, सुरक्षित भोजन, साफ पानी और जागरूकता, ये चार बातें कई बीमारियों को रोक सकती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि कीट नियंत्रण केवल दवाओं से नहीं बल्कि अच्छी आदतों, साफ सफाई, सुरक्षा और सामूहिक प्रयासों से होता है।
0: बिल्कुल,
1: विश्व कीट दिवस हमें ये अवसर देता है कि हम अपने गांव में, अपने घर और समुदाय के अंदर स्वच्छता का वातावरण बनाए रखें और ये सुरक्षित होने का संकल्प लें। यदि हर महिला अपने घर में एक छोटा सा बदलाव भी करती है तो उसका पूरा प्रभाव उसके समाज को दिखाई देता है, इसके साथ ही अपने घर और समुदाय में भी।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो मैम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद।
0: जैसा कि कशिश अभी हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ के तौर पर सृष्टि मैम जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान पाए। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को हम कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ श्रोता,
0: साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए। इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
2: और आपके अपने साथी अंजलि पारशर को।
0: नमस्कार।
2: साथी श्रोता साथियों, छोड़े चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे के बीच में आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। हमारे इस नंबर पर हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है बरखा, गीत के बोल हैं तड़पाओगे तड़पा लो। इस गीत की फरमाइश करते हैं हरमिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गंजडवारा से शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत की अनुरोध करता है श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशी शेख, नासिया नाशी, साहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमेद मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल जी मुजावर, जुमेद जी मुजावर। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही तड़पाओगे तड़पा लो। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।
1: तारेगामा कारवा

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंढरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करते हैं प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़ी, करुणा मीना, अश्विन विपुल जी कामड़ी और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। पंढरपुर सिटी से जाकिर मुलानी, समया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, चाचा चाची जी और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इस गीत के अनुरोध करता है मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समरराज आर्यन वर्मा, बीबी आरोही, ऐशिका, श्वेता जी वर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मजनू का टीला से। फिल्म का नाम है किस्मत, गीत की बोल ही आंखों में कयामत के। इस गीत की फरमाइश करता है मधु बालूजा, सागर बालूजा, सताना एमपी से जुड़ रही उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहिजी मलिक और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, आयुष आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आरुषि श्रीवास। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर, सोनाली जी। मलकापुर से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण इगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मेहकर जी। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम जी शाक्य। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं जॉन डेकिस्टो, रोजी डेकिस्टो, पर्ल डेकिस्टो, विलेज डेकिस्टो जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी, हिमांश जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं नंदीड महाराष्ट्र से संतोष भाड़की, सुकन्या सुनियाना, सरिता भाड़के जी। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जेलगोड़ रोड रायगढ़ से। फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल। इस गीत को सुनना चाह रही हैं मीना कौर, संदीप कौर। रायगढ़ से जुड़ रहे हैं लालचंद मिश्रा, कुमकुम जी मिश्रा। छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ना चाह रहे हैं साहिद खान, अफ्ताब ताज जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, बेगम शबनम नाज, अस्मा नाज, बेगम प्रमिला जाटव जी। बक्सर से जुड़ रहे हैं राज अंसारी, शिल्पी अंसारी, उमा राज। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं वसीम अंसारी, बेबी अंसारी, यामिनी राज। रायगढ़ से जुड़ रहे हैं नरेंद्र यादव, महेंद्र यादव, जानवी जी यादव। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बरेली से आमिर अंसारी, नूर अंसारी, शशिम अंसारी, नरसी अंसारी, शमाजी अंसारी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन करवासरा, सतीश करवासरा और युधव जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधानजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रही पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है ग्वालियर से। फिल्म का नाम है डर, गीत के बोल हैं जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन। इस गीत की फरमाइश करते हैं सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, एसपी पप्पी जी खुराना। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे भगपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी, इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पूर्णा जक्सन मस्तानपुरा से, अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन भारती जी, भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुड़ रही हैं रामनिवास प्रजापति जी, सुमन देवी जी। और भी श्रोता साथी इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से जगदीश, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह, शिवांगी जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं जादू तेरी नज़र। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना, गीत के बोल थे जादू तेरी नज़र। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागपत सी। फिल्म का नाम है बादल, गीत के बोल हैं जुगने जुगने। इस गीत की फरमाइश करता है आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब, लड्डू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं रायगढ़ मध्य प्रदेश से, गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़ी, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सुप्रील जी धाड़ी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुनहाल जी मेहरा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा देवी शर्मा, सार्थक जी शर्मा। भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, पूजा परिहार जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं जुगने जुगने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। फिल्म का नाम है राजा, गीत की बोल ही झुकी झुकी नजर तेरी। आप इस गीत के अनुरोध करता है राजू मिलकानी, बबीता मिलकानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं भीड़ शहर महाराष्ट्र से, नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, पिपी कुतलेश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से बड्डू लोहार पोपलगढ़, चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास जी पोपलगढ़। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, लोखीलाल जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है नेहरू चौक पेठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जाधव और संगीता जी जाधव। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वाग रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत करते हो दोस्तों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम में हमारा आपसे रोज़ाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। तो आज भी जैसा कि ये सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था, जिसे आप सभी सुन रहे थे आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो साथियों, जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ में फरमाइशों के सिलसिले को लेकर यूँ ही आगे बढ़ाने के लिए। तो बढ़ना चाहूँगी अगली फरमाइश की ओर। साथियों, अगली फरमाइश जो आई है वो गंजुड़वाड़ा गणेशपुर से है। श्रोता साथियों की फरमाइश है, मेरी जंग फिल्म का गीत जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने, और फरमाइशकर्ता गणेशपुर से इस गीत को सुनना चाह रहे हैं फिरासत हुसैन, अलकमर जहां, सिफा सेवरीन और अल्फेज जी। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं, नवा शहर से हैं सुरेंद्र साधु, अनिता साधु, रोहित साधु, रितेश साधु, शिक्षा साधु, प्रतीक्षा साधु और मेक्स जी। कॉल गांव से जुड़ना चाह रहे हैं मराठवाड़ा से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी, कल्पना देशमुख। किशोर नगर अमरावती से हैं शिला देवी सेंडे, श्री रामन शेंडे, सिद्धार्थ गुणाने जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल रचिता किशोरी दान खुराना जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, इसी गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से आई है। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं सैयद मस्तूर, साहिना असम, अक्सर, नाजमा, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब जी। इन श्रोता साथियों की फरमाइश है कि सुनाया जाए हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत हम प्यार है तुम्हारे। दोस्तों, बताना चाहूंगी इस गीत को आवाज़ दी कुमार सानू जी और अलका याग्निक जी ने। और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, वागर रेडियो से जुड़ रहे हैं कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना मोहम्मद कैफ अंसारी जी। इसी बीच एकता कॉलोनी रोहतक से भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। साथियों, जाकोद राजस्थान से हैं शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुदाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। झारखंड से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद यासिन अंजान, सावन नवाज, असन नवाज, बाबू अहद, मिर्फरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं हम प्यार हैं तुम्हारे। तब तक आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बुलंदशहर चोखुनटी से। फिल्म का नाम है साथियों इम्तिहान। गीत के बोल हैं चाहा तो बहुत ना चाहा तुझे। इस गीत को आवाज़ दी कुमार सानू जी ने और फरमाइश करता हमारे बीच जुड़ रहे मोहम्मद सिद्धवासी, निगत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। वसीम महाराष्ट्र से हैं, मास्टर विठल सुरेश, सुषमा सुरेश, प्रदीप सुरेश, मायरा सुरेश जी। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहरितिक, बलवीर सिंह जी। गंजुडवारा से हैं, मोहम्मद यासिन आशमी, नाजमा बेगम आशमी, तौसीफ आशमी, तैमूर आशमी, कलीम अंसारी जी। कासगंज से हैं, जैद अली सैफी, आबाद खान, जुहान सैफी, लिब्बा मलिक जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चाह तो बहुत ना चाह तुझे। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश कासगंज से आई है। श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी। गीत के बोल हैं, पर्दा है पर्दा। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं जाहिद अली सैफी, सबीना बानो, हसाद बानो, जुहान सैफी, लिब्बा मलिक जी। इसी बीच हमारे श्रोता साथी और भी हैं जो पसंद इसी गीत को करना चाहते हैं, सुन रहे हैं। ताजबंद अंसारी, गुलाम शाबी रही, मेराज जहां, आजार नगर लक्सर हरिद्वार से। टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। राजकोट से जुड़ना चाह रहे हैं मधुसूदन भट्ट जी, आरती भट्ट, जस्मीन प्रयागराज भट्ट। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे जी। खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे जी। कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। रायगढ़ बिहार से उमाराज, शफी उमा, याकूब उमा, अजमल उमा और कलीम उमा जी। खंडवा से हैं दुर्गा कुमारी, सपना, राकेश ताई जी। डुमराव से लालू बाबू दीवाना, दिवा भारती। सहारनपुर से महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी नरेंद्र यादव। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं पर्दा है पर्दा। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी, श्रीरामपुर से। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। फरमाइश करता इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, जुड़ रहे हैं अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार, पुनावले से अजय सोनवानी, करिश्मा सोनवानी, अविका सोनवानी और साइशा जी। इसी बीच जुड़ रहे डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, नजमा अंसारी, नाज अंसारी, शबनम बानो जी, एजिराज अंसारी, खात्मा और फातिमा नाज अंसारी, डॉक्टर वदीबा जी। श्रीरामपुर से जुड़े अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, इश्के दले, जीविका दले, सानिका दले, पुनावले, पुणे से अजय सोनवानी, करिश्मा, अविका, शायसा, विकाशा मंगलकर जी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं रुपेश सिंगे, महेश प्रिगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार। कुंभार गली कौल गांव से हैं पांडु चंदन, उषा रंदन और चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष और पांडुरंग कुम्हार जी। मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधन उतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, अश्पित शर्मा, इश्पित शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा, रेशमा गोदारा, गोदारा सुनीता शर्मा, सुनीता जैन, सुनीता दिलोर, हरिपाल कौर जी, मीनाक्षी तिवारी जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे साथियों आपके बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूँगी, कासम कॉलोनी सनावत से। फिल्म का नाम है तेरे नाम, गीत के बोल हैं ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। फरमाइशकर्ता जुड़ रही यूनुस खत्री, रफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना जी। जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त, आकोट से हैं विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे, पवन चरिये, संजीव डाबीराव जी। और भी श्रोता साथी डाबकी रोड अकोला से हैं शिशिरा देवी मंदुरकर, सदन मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान, इरफान इरकास, नरगिस खातून जी। साथियों मलोट से हैं रमेश कुमार जजोरिया, गिदरनी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया जी। तो आइए सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत को। गीत के बोल है ओढ़नी ओढ़ के नाचूं।

श्रोता साथियों, जैसे कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। साथियों, अगली फरमाइश पलारी छत्तीसगढ़ से आई है। फिल्म का नाम है मैं प्रेम की दीवानी हूँ। गीत के बोल हैं ओ अजनबी मेरे अजनबी। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन जी। पथरोड से विजय अंबाड़कर, सुनीता अंबाड़कर, ऋषिकेश, राधिका ऋषिकेश और राधिका अंबाड़कर जी। जुड़ना चाह रहे कश्मीर से फैजरा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, हीरामन शेंडे, प्रेम प्रसिद्धि प्रतिभा गुणाने जी। साथियों, अम्बाला हरियाणा से श्रोता साथी जुड़ रहे रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। पेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो मानस राज। पंडरपुर सिटी से जुड़ना चाह रहे रोहिदास चौक से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशा शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के जी। और भी दोस्त सरधना मेरठ से हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर, जेवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पुनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी। साथी जुड़ना चाह रहे हैं महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भी। पसंद करते हैं इसी गीत को दोस्त हैं उदयन पाल, जहिन पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल जी, दिव्यांश बघेल और समस्त बघेल परिवार सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशव, रिधान खुराना जी। इसी बीच श्रोता साथी और भी हैं जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। मस्तानपुरा पुन्ना जंक्शन से हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन साहू जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानु, शानू, बब्बन मुन्हू, काना ठाकुर, हरिप्रिया जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि बन्नी और आरुष्वर्य दिनेश जी। साथ ही जुड़ रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला जी। अक्कलकोट से जुड़ना चाह रहे साबिर गोलंदाज, महबूब सैयद, जहांगीर गोलंदाज, जेबुन गोलंदाज, नजमा गोलंदाज और सभी गोलंदाज परिवार के सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। आपको बताना चाहूंगी साथियों, जलालाबाद वेस्ट से श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं सुरेश गंगनेजा, पुनम गंगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी, निमित आहूजा जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ओ अजनबी मेरे अजनबी। आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। साथियों, आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की दीजिए अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: वही तो दिल्ली से अब तक निकला ही नहीं। कमाल कर रहा है यार, हम सगाई के फंक्शन में जा रहे हैं, कब बात यार।
1: जल्दी आओ प्रेम।

साथियों, ये थी हमारी आज की सभा जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात
हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना, क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसी के आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर हमारे अगले एक खास और रंगों से भरे कार्यक्रम घूमर की ओर, क्योंकि साथियों, राजस्थान की संस्कृति में घूमर केवल एक लोक नृत्य नहीं, बल्कि नारी की खुशी, सम्मान और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। इसी परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित है हमारा ये विशेष कार्यक्रम घूमर, जहां महिलाओं से जुड़ी बातें, उनकी प्रतिभा, अनुभव और जीवन की प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाई जाती है। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं, इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे, और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: थारी में पासो लावो जूनू हवा, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
2: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोनो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं, बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
4: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना ना कदम है, ई आबा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में।
0: जी हाँ
1: कशिश, खाद्य सामग्री मनुष्य स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खाद्य सुरक्षा एवं खाने की गुणवत्ता, जो कि एक मनुष्य के बेहतर और निरोग स्वास्थ्य की सुनिश्चितता का प्रमाण देता है।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, हमारे भारत में खाद्य सुरक्षा का महत्व एवं उसकी गुणवत्ता की भूमिका आज के इस युग में इतनी आवश्यक है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आज के समय में मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है कि वह जिस भोजन का सेवन कर रहा है वह कितना सुरक्षित है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों से आज के हमारे इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी भी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है शुरुआत में उन्हें गीत संगीत से रूबरू करवाने का, तो क्यों ना उस दस्तूर को हम पहले निभा लें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो हमने आपको बता ही दिया कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल कशिश, खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता की जानकारी के अभाव और लापरवाही के कारण आज पूरे विश्व में खाद्य जनित बीमारियां सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनते जा रही है। श्रोताओं, क्योंकि खाद्य असुरक्षा से अक्सर लोगों में एनीमिया, जिसे हम खून की कमी कहते हैं, कुपोषण, कम वजन होना, ये सब बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो भविष्य में किसी भी बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, और हम कह सकते हैं कि कई सारे रिसर्च में या अध्ययन में पाया गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पोषण की स्थिति खराब है, कुपोषण से ग्रसित बच्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
0: जी हाँ,
1: और हम कह सकते हैं कि उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई में भी वृद्धि हुई है। अविकसित और कमजोर वर्ग के बच्चे बीमारियों की चपेट में अधिक जल्दी आते हैं। कम वजन, उम्र के हिसाब से कम वजन यानी कि बच्चों का अनुपात भी बढ़ रहा है।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ श्रोताओं, आपको अगर हम खाद्य सुरक्षा के अर्थ को बताएं तो खाद्य सुरक्षा से हमारा तात्पर्य यही है कि मनुष्य के लिए पर्याप्त मात्रा में खाने की उपलब्धता और जो भी खाने का सेवन मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है वह उसके स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ और पौष्टिकता से भरपूर हो और वह खाना मानव के शरीर को स्वीकार्य भी हो।
1: जी हाँ, और हम कह सकते हैं कशिश कि खाद्य सुरक्षा में उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता कराना, उसे लोगों की पहुंच तक सुलभ बनाना, किफायती मूल्य पर बेचना और भोजन की पौष्टिकता को सुनिश्चित करना श्रोताओं अनिवार्य है। और इसके लिए भारत सरकार ने, हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI की स्थापना की, जिसका कार्य भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की निगरानी और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ श्रोताओं, अब आपको बताना चाहेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता की महत्ता आज के इस युग में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भोजन से पैदा होने वाली बीमारी बड़े स्तर पर सामने निकल कर आ रही है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अगर आपको नाम बताएं श्रोताओं, तो कोरोना वायरस, डायरिया, खसरा, रोटा वायरस, कवक जिसे हम फंगस कहते हैं, टाइफाइड, इन सभी बीमारियों के कारण मनुष्य के लिए स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करना अति

0: लेना है, किस तरह का खान पान खाना है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि कशिश हम कहते हैं कि हमारे जो युवा साथी है वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जब युवा साथी ही इस तरह के भोजन का सेवन करेंगे जिससे उनका शरीर कमजोर हो जाएगा तो वो आगे किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे और उनका मन भी नहीं लगेगा किसी कार्य को करने के लिए।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए आज हम हमारे युवा साथियों से यही बताने वाले हैं कि खाद्य सुरक्षा हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, हमारे भारत में अधिकतर लोगों के लिए केवल पेट भरने के लिए भोजन करना जरूरी होता है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन पेट भरने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस भोजन का सेवन हम कर रहे हैं क्या उसमें उचित मात्रा में पोषण, कैल्शियम, विटामिन है जो उसके स्वास्थ्य को स्वस्थ और सक्रिय बनाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और उसके पाचन तंत्र को भी मजबूत करेगा। इसलिए श्रोता, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, यानी कि आज ही के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है।
1: दोस्तों, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति ध्यान आकर्षित करना इस दिवस का उद्देश्य है और खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, पता लगाने और प्रतिबंधित करने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कशिश कि भारत में घरेलू खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। लेकिन श्रोताओं, बड़े पैमाने पर तैयार किया गया खाद्य उत्पादन और उसकी प्रसंस्करण और भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि कशिश, प्रौद्योगिकी में प्रगति, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होना, बेहतर क्रय शक्ति, बढ़ती उपभोक्ता की मांग ने कई प्रकार के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्माण किया है।
1: जी हाँ।
0: जिसकी सुरक्षा का आंकलन करना आवश्यक है श्रोताओं, क्योंकि भारत में बीते कुछ वर्षों में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता से संबंधित मामले बड़ी मात्रा में सामने निकल कर आए हैं कशिश।
1: जिसके कुछ कारणों से अगर श्रोताओं हम आपको रूबरू करवाएं तो सबसे पहले आता है लोगों की बदलती जीवन शैली और खान पान की आदतों ने लोगों को घर से बाहर खाना खाने के लिए मजबूर कर दिया है।
0: बिल्कुल।
1: जहाँ बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और भोजन के बचने पर वहीं बासी भोजन दूसरे दिन भी उपयोग में लिया जाता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसी परिस्थिति में भोजन दूषित होने की संभावनाएं अधिक होती है। जागृति जी, श्रोताओं, जैसे कई जगह ऐसा पाया गया है कि भोजन में या पेय पदार्थ में छिपकली और मेंढक जैसे मृत जीव हमें मिले हैं।
0: जी हाँ।
1: जो कि खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता के प्रति चिंता को और भी गहरा करते हैं।
0: जी हाँ। और श्रोताओं, आज के समय बाजार में कितने ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें मिलावट की जाती है, जिसे महीनों पहले पैक कर दिया जाता है, बिना किसी चिंता के ही वह खाद्य पदार्थ शुद्धता के मानक को प्राप्त कर रही है या नहीं।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ ये भी कारण है कि वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है श्रोताओं कि इसका असर खाद्य पदार्थों की शुद्धता और पौष्टिकता पर भी हो रहा है। क्योंकि कशिश, वातावरण में प्रदूषण, मिट्टी और पानी भी प्रदूषित और किसानों के द्वारा भी उपयोग किया जाने वाले कीटनाशक और उर्वरक भी खाद्य सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। साथ ही श्रोताओं, खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट और रंगीन बनाने के लिए भी परिरक्षक और अन्य रासायनिक एजेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
0: जी हाँ।
1: जिसके कारण फूड पॉइजनिंग जैसे मामले हमें देखने को मिल रहे हैं आज। जागृति जी,
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, इन सभी कारणों की वजह से खाद्य सुरक्षा में उसकी गुणवत्ता के प्रति चिंता पड़ रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा में उसकी गुणवत्ता को पहले प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: खाद्य सुरक्षा की महत्ता भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी, जो कि भूखमरी, कुपोषण को खत्म करने की बात करता है।
1: जी हाँ जागृति जी। तो दोस्तों, बातें जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर ढेर सारी चली रही हैं। ये बातें निरंतर आगे भी आपसे ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और बात कर रहे थे इस खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर। यही बात करते हैं खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती। इससे पहले हम कारणों को जान रहे थे। अगर चुनौतियों पर बात करें कशिश, तो भारत में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता को कायम रखने के लिए सरकार के आगे कुछ बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसे खत्म करना होगा। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज भी भारत में हम कह सकते हैं कि कई मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कुपोषित हैं और ये पूरे विश्व का एक चौथाई है।
1: जी हाँ साथी श्रोताओं, लगभग कई प्रतिशत बच्चे भारत में लंबे समय से कुपोषण का शिकार हैं, जिसके लिए सरकार को अपने कार्यक्रम को अच्छे तरीके से कार्यान्वित करना होगा।
0: बिल्कुल,
1: दो देशों के बीच हो रहे युद्ध भी सरकार के लिए खाद्य सुरक्षा के प्रति एक चुनौती है, क्योंकि युद्ध से वैश्विक व्यापार भी प्रभावित होता है। जागृति जी,
0: बिल्कुल, और खराब मौसम की स्थिति भी खाद्य पदार्थ की उपज को कम कर देती है कशिश, जिसका प्रभाव खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता पर पड़ता है।
1: जी हाँ,
0: और हम बात करें तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 113 देशों में 71वें पर है, जो कि दर्शाता है कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में आज भी पीछे है, जिसे सरकार को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल, साथ ही भारत में रेडी वाले और फेरी वाले छोटे खाद्य सामग्री निर्माता बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि असंगठित खाद्य क्षेत्रों में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और देश की अधिकांश आबादी इन क्षेत्रों में भोजन करती है, इसलिए श्रोताओं, यह भी खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़ी करती है, क्योंकि इस असंगठित खाद्य क्षेत्रों को भी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण से दूर रखा गया है।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं, जैसे कि भारत में खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए प्रशिक्षण प्रयोगशाला की कमी है, तो उसे पूरी करनी चाहिए, और जहां जहां बने हुए तो वहां वहां खाद्य सुरक्षा को प्रयोगशाला में लाकर उसकी निगरानी करनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: और हम कह सकते हैं कि निजी प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला बहुत कम है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, भारत में खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता की अनिश्चितता लोगों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि भोजन की गुणवत्ता ही स्वस्थ शरीर के विकास की पुष्टि करती है। सरकार इस मुद्दों के प्रति अपने कार्य कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को भी कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा।
0: बिल्कुल कशिश, जैसे कि कोशिश करें श्रोताओं कि बाहर के खाने से परहेज करें। अगर हमारे साथ मजबूरी है कि हमें बाहर का ही खाना खाना है, तो पहले चेक करें कि बना हुआ खाना सही प्रकार से बना है या नहीं, उसी के बाद हमें खाना चाहिए।
1: बिल्कुल, साथ ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित आहार योजना बनाने का आप प्रयास करें, क्योंकि आहार योजना आपको उचित मात्रा में पोषण, कैल्शियम और विटामिन प्रदान करती है, जिसकी आपके शरीर को जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ श्रोताओं, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अपने किचन में खाने की चीजों को हमेशा ढककर रखें, क्योंकि खुला खाना चूहों, छिपकलियों, तिलचट्टों को निमंत्रण देता है और यही बीमारियों का कारण बनता है कशिश।
1: बिल्कुल,
0: और लोगों को उपभोग योग्य खाद्य पदार्थ लेते समय ये सुनिश्चित करना चाहिए श्रोताओं कि भोजन ताजा और स्वस्थ हो, और समाप्ति की तारीख भी हमें जांच कर लेनी चाहिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से बीमारी को रोकने में हमारी मदद करता है।
1: बिल्कुल, साथ ही श्रोताओं, देश के जागरूक नागरिक होने के नाते अगर हमें कहीं खाने में मिलावट देखने को मिलती है या फिर बाहर किसी रेस्टोरेंट और होटल में दूषित भोजन प्राप्त होता है, तो हमें अवश्य उपभोक्ता अदालत में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
0: जी हाँ,
1: जिससे वह अगली बार इस बात का ध्यान रखे।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं, ये कुछ बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा, और खाद्य सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता के प्रति शुद्धता जरूरी है या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है दोस्तों। और आप समझ ही गए होंगे कि अगर खाद्य सुरक्षा में मिलावट हो गई दोस्तों, तो हमारा शरीर बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा।
1: बिल्कुल,
0: और काम करने के लिए शरीर को चलाना बहुत जरूरी है, इसीलिए ध्यान रखे दोस्तों, हमेशा खाद्य सुरक्षा के लिए कभी कोई भी चीज अगर हमें खानी है, बाहर जा रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। बाजार से कोई चीज ला रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट देख ले कि कब इसका एक्सपायर हो रहा है। ये सब चीजें छोटी मोटी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, जिससे हम हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं और हमारे देश को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, तो दोस्तों बातें जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर ढेर सारी हो चुकी है, और अब हम देख भी रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: तो दोस्तों विदा जरूर लेंगे, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट, कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोताओं, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमें आपकी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdhara.org,
1: radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दोस्त जागृति
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों को नई परिस्थितियों से निपटने में माता पिता कैसे मदद कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: कशिश, हम देखते हैं कि कई बच्चे नई परिस्थितियों का सामना करते समय संवेदनशील और भयभीत हो सकते हैं। अधिकांश बच्चे इन भावनाओं से निपटना सीख जाते हैं।
0: जी जी
1: श्रोता साथियों, यदि आपके बच्चे की चिंता उसे उन गतिविधियों में भाग लेने से रोकती है जिसमें अन्य बच्चे रुचि लेते हैं, तो उसे अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हमारी बातें इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी रहेंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोताओं को गीत सुनवाएं हम पहले।
1: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों को नई परिस्थितियों से निपटना कैसे सिखा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को नई परिस्थितियों से निपटने में मदद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसके कई तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर श्रोता साथियों बताना चाहेंगे कि उसे धीरे धीरे सांस लेना सिखाएं और उसे समायोजित होने के लिए समय दें।
0: बिल्कुल।
1: यदि आपके बच्चे का नई परिस्थिति से डर उसके सीखने या खेलने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, तो आपको उनके साथ कुछ गतिविधियां करके अपने बच्चे को उस गंभीर समस्या से बचाना होगा।
0: जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं अंजलि जी कि कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को कुछ नई परिस्थितियां डरावनी लगने लगती हैं। वो क्यों लगती है अगर इस बारे में जाने साथियों, तो हम देखते हैं कि कई बच्चे मिलनसार, जिज्ञासु और साहसी होते हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन श्रोता साथियों, कुछ बहुत ज्यादा सतर्क भी होते हैं। नई परिस्थितियों का सामना करते समय वे संवेदनशील या फिर डरे हुए भी हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आपको बताएं तो नई परिस्थितियों का सामना करते समय कुछ हद तक डर और चिंता होना सामान्य बात है। लेकिन दोस्तों, एक बच्चा होने का एक हिस्सा अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करना भी है और खोज करना भी है, साथ ही डर जैसी अपनी भावनाओं से निपटना सीखना भी है।
1: जी बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चे और युवा बच्चों में खुद को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा कौशल नहीं हो सकता, और जब वे अभिभूत होते हैं तो वे नखरे कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: और हम कह सकते हैं कि या मेल्टडाउन कर सकते हैं। श्रोता साथियों, जब आप उन्हें जवाब देते हैं और उनकी भावनाओं को पहचानने में उनकी मदद करते हैं, तो वे सुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे को अक्सर चिंता या बेचैनी की भावनाएं होती हैं, तो उसका डर और भी बढ़ सकता है। स्थिति के बारे में सोचना भी उसे चिंतित कर सकता है। श्रोता साथियों,
0: जी हाँ।
1: इससे निपटने के लिए वे स्थितियों से बचने की कोशिश कर सकते हैं या उन्हें उन गतिविधियों में भाग लेने से रोक सकता है कशिश, जो अन्य बच्चों को पसंद है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, अगर आपका बच्चा डरता है तो आप उसका समर्थन कर सकते हैं, उसे मिलनसार और साहसी बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और उसे दिखा सकते हैं कि कई नई परिस्थितियों में उन्हें कैसा व्यवहार करने की जरूरत होती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो श्रोताओं, इस तरीके से हम ये जान पाए कि किस प्रकार से नई परिस्थितियों का सामना करने में बच्चे कभी कभार डर जाते हैं और ऐसे में माता पिता उनकी मदद कैसे कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: अब यही जाने कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो बच्चों को चिंतित या फिर शर्मिला बना सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि घर बदलना या फिर नया बिस्तर लेना, प्री स्कूल, डे केयर या स्कूल जाना, परिवार में समस्याएं जैसे कि परिवार का टूटना, किसी स्वास्थ्य पेशेवर जैसे डॉक्टर या फिर दंत चिकित्सक के पास जाना।
1: जी हाँ।
0: नए लोगों से बात करने में भी बच्चे कभी कभार चिंतित और तनाव महसूस करते हैं, और किसी अपने से दूर होना।
1: जी बिल्कुल।
0: दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि चिंता का अनुभव करने वाले सभी बच्चे आपको यह नहीं बता पाएंगे कि उन्हें डर लग रहा है। आप देख सकते हैं कि उनमें कुछ शारीरिक लक्षण दिख सकते हैं।
1: जी जी।
0: जैसे कि सोने में कठिनाई होना, पेट दर्द होना, भूख में परिवर्तन होना या फिर खाना खाने से इनकार करना, सिर दर्द या फिर किसी भी प्रकार की कोई बुरे सपने आना।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि बच्चों की चिंता के भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, कम चंचल होना, परेशान होने पर शांत होने में कठिनाई होना, अत्यधिक चिपचिपाहट होना।
0: जी
1: ये
0: जी।
1: सारी चीजें जो हैं वो बच्चों के अंदर हमें दिखाई देने लगती हैं जब वो किसी चीज से डर रहे हैं या नई परिस्थिति को अपनाने में वो घबरा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे तो में हम हमारे बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं, इसको लेकर आगे हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम में अवश्य बातें रहेंगी। लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हमारे जो बच्चे होते हैं वो नई परिस्थितियों को अपनाने में बहुत सी बार डर और चिंता महसूस करने लगते हैं।
1: जी जी।
0: इससे पहले हम ये जान पाए कि वो परिस्थितियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं और उसमें हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, यहीं अब बात करें कि माता पिता होने के नाते हम किस तरीके से हमारे बच्चों को इस परिस्थिति से निपटने में मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, अपने बच्चों की चिंताओं को स्वीकार करें और उन्हें ऐसी परिस्थितियों में न डालें जिससे वे डर जाएं। अपनी भावनाओं के बारे में बात करें और अपने बच्चों को ये बताने के लिए भाषा सिखाएं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा लगता है कि आप थोड़ा चिंतित महसूस कर रहे हैं। कभी कभी जब मैं चिंतित महसूस करता हूँ तो मेरा पेट हिलने लगता है। अपने बच्चों को नई परिस्थितियों से पहले तैयार करें, उन्हें उनकी नियमित दिनचर्या में होने वाले परिवर्तन के बारे में पहले से बताएं, या जब कोई चीज शुरू या बंद हो रही हो तब भी हम उन्हें बता सकते हैं।
1: बिल्कुल। साथी श्रोता साथियों, आप उन्हें साहसपूर्वक प्रोत्साहित भी कर सकते हैं और कुछ नया करने का प्रयास बता सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: आपको बताएं तो अपने बच्चे के साथ कुछ समय बिताकर उसे नई परिस्थितियों में ढलने और उसका आदी होने का समय आप दें।
0: जी हाँ।
1: उन्हें धीरे धीरे अन्य बच्चों के साथ खेलने और तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। कुछ समय के लिए अपने बच्चे से दूर आप जा सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को ये पता हो कि आप वहाँ हैं। इससे पहले कि वे परेशान हो आप उनके पास लौटाएं।
0: जी बिल्कुल कशिश। इसी के साथ अगर कोई परिस्थिति उनके लिए बहुत ज्यादा है तो आप उन्हें प्रबंधनीय हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें तैराकी करने से बहुत डर लगता है तो उन्हें कुछ देर के लिए बैठकर दूसरों को तैरते हुए देखने का सुझाव दें।
1: जी,
0: जब
1: जी।
0: वे सहज महसूस करें तो वे अपने पैरों को पानी में लटका कर देख सकते हैं। उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करें, उन्हें याद दिलाएं कि कोशिश करना अच्छा है।
1: जी हाँ।
0: कशिश, हम देखते हैं कि अधिकांश बच्चे आमतौर पर समस्याओं को स्वयं ही हल करना सीखते हैं।
1: जी जी।
0: इसलिए मदद करने से पहले उन्हें प्रयास करने दें। श्रोता साथियों, आप चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उन्हें सामना करने की रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें धीरे धीरे सांस लेकर खुद को शांत करना सिखाएं। 3 सेकंड के लिए सांस अंदर लें और 3 सेकंड के लिए सांस बाहर छोड़ें। अपने बच्चों को यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना है श्रोता साथियों कि आप खुद आत्मविश्वासी और मिलनसार दिखे, ताकि आपका बच्चा देख सके कि यह कैसे किया जाता है।
1: जी बिल्कुल। साथी श्रोता साथियों, यदि आप चिंतित हैं या यदि आपके बच्चे का नई परिस्थितियों से डर उसके सीखने या फिर खेलने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है और उसे बहुत परेशान कर रहा है, तो आप अन्य लोगों की सलाह भी ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश। इसके लिए हम बाल विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चों का डर बहुत बार माता पिता द्वारा उनकी मदद किए जाने पर भी नहीं जाता है।
1: जी जी।
0: तो ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए हम डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर हमें कुछ ऐसे आसान से उपाय बताते हैं, कुछ गतिविधियां हमें बताते हैं जिसके माध्यम से बच्चों का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे में श्रोता साथियों, नई चीजों को बच्चों के जीवन में अपनाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में शुरुआत से ही हम बच्चों के अंदर कुछ ऐसी आदतें डालें जिससे बच्चे जो हैं वो हर परिवर्तन को अपने जीवन में स्वीकार करें।
1: बिल्कुल।
0: हमें बच्चों को बहुत सारी बातों से समझाना होगा और बच्चों से अपनत्व मित्रतापूर्ण व्यवहार करके ही हम ये सारी चीजें समझा कर उन्हें नई चीजों को अपनाने में मदद कर पाते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख भी रहे हैं कि समय हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी बिल्कुल।
1: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना दोस्तों को यहाँ पर एक और गीत सुनवा दें हम।
0: जी बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001।
0: जी हाँ।
1: और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी अपने राय सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: बहन बहनों गीत बाद आप सभी फेरे स्वागत कर रहे हो हमारे आज ने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। जिम की बहन बहनों गीत तक की पहले हमें विषय बताड़ियो हतु कि आज हमें बात करवा वाला है कि आज जो जलवायु परिवर्तन है अना दौर में स्थानीय ज्ञान सामुदायिक प्रयास ने अनुकूल खेती आडिया पण हेते वदम। अंजलि बोन आपण देखो हां कि प्रकृति ना जी संकेत है ने आ विज्ञान जो सफर है अना आपणे पूर्वज हता वे अना ने संकेत ने समझता हता। पेड़ों ने पत्ती पक्षियों व्यवहार ने हवा ने बादल ने बदलती दिशा आ सब आपणे पूर्वज ने मार्गदर्शन हता। पण आपण देखो हां कि आ सब संकेत अवेना टाइम में अस्थिर थई जाय है। मौसम नो चक्र है वो बदलाई गयु है। तापमान आपण देखो हां कि बढ़ी रही है। वर्षा अनियमित थई गई है। आ स्थिति आपने आ ही काढ़े है कि अवेना टाइम में केवल पारंपरिक ज्ञान ही आपणे बलदे पर्याप्त नहीं है बल्कि आपणे वर्तमान परिस्थिति हिसाब खती नवी समझ ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने हाथ आगाड़ी वधवू है। आ संतुलन आज खेती ने मजबूत बनावेगा ने आपणे भी आगे वधावेगा।
1: हवे मनीषा बोन आपे सही कीधु आए सवे बात करो तो आपणे मौसम ने अनुसार खेती नी योजना बनावी होगा। आपणे टेम माते निर्णय टेम माते फसल नु चयन ने बारिश आधारित जे खेती है अगर वर्षा देर उदी थाय है तो बुवाई प्रभावित थई जा अगर वधारे पानी पड़ी जा तो अपनी फसल खराब थई जा एवं एक किसान भाई बहन जो है एना ने मौसम ना बदलता पेटर्न ने समझवो होगा ने एने अनुसार योजना करवी होगा। अगर गर्मी नो टाइम वधी गयो है तो जल्दी बुवाई वधारे तापमान सहन करवा वाली जे फसले है ये आपणे करवी होगा। अगर वर्षा कम थई रही है तो कम पानी में उगवा वाली जे किस्मे है एनोनु आपणे चयन करवो होगा। भाईन बनो आ बदलाव केवल विकल्प ज नथी बल्कि आवा वाला टाइम नी जरूरत है क्योंकि अगर आपणे मौसम ने अनुसार खेती करंगा एने अनुसार योजना बनावंगा तो आपणे लाभ मिलेगा। आपणे जे खेती है ये आपणे कही शकां के घाटा नो सोदो थई शका।
0: હવે અંજલિ બોન એને સાથે ભાઈન બોન ને કેવું ચાંગા કે વણને પરંપરાગત બીજ નો ઉપયોગ કરવું હે વણને સુરક્ષિત ભવિષ્ય ની નીવ સ્થાનીય બીજો મે છુપી સહનશીલતા ને આત્મનિર્ભરતા ને પરંપરાગત બીજો નું ચયન અને પ્રક્રિયા નું સખુદ મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો હે। સ્થાનીય ને પારંપરિક જે બીજ હિ વી કેવલ ફસલ માટે જ નથી બલ્કિ પેઢીઓ ને અનુભવ ને જ્ઞાન નો સંગ્રહ ભી હે। આ બીજ હિ વી આપણે ક્ષેત્ર ની મિટ્ટી જલવાયુ ને પરિસ્થિતિઓ ને અનુસાર અસલ રહે હે। એન કરતી આપણે કહી શકો કે એનમાં હુકું સહન કરવાનું ને પાણીની કમી હોવાન બાદ બી વધવાનું ને કીટક હતી લડવાની ક્ષમતા રહે એ વધારે રહે। અંજલિ બોન આદિવાસી સમુદાયમાં દેશી બીજનો જો સંરક્ષણ હે ને ઉપયોગ હે વણને ન કેવલ ખેતીને સુરક્ષિત બનાવે હે બલ્કિ વણને આત્મનિર્ભર ને સંસ્કૃતિની પહેચાનને ભી મજબૂત કરે હે। આજે આપણે ભાઈ બોનને જરૂરત હે કે વે અણ બીજને

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि भोजन मनुष्य की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, जिस प्रकार स्वच्छ वायु और शुद्ध जल जीवन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार सुरक्षित और पौष्टिक भोजन स्वस्थ जीवन का आधार है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आज के समय में केवल भोजन उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सुरक्षित शुद्ध और पोषण युक्त होना भी उतना ही जरूरी है। यही कारण है कि खाद्य सुरक्षा का विषय पूरे विश्व में महत्वपूर्ण बन गया है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी कि खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है और क्या फायदे हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम के पहले इस गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वग रेडियो 90.8।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि अंजलि, गीत से पहले हमने विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, खाद्य सुरक्षा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना जिससे वो स्वस्थ रहे, सक्रिय जीवन जी सके। लेकिन अगर भोजन दूषित होगा, मिलावटी या असुरक्षित होगा तो वो शरीर को पोषण देने के बजाय बीमारियों का कारण बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए श्रोताओं, खाद्य सुरक्षा केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास का भी आधार है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, विकास, कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता का आधार है। जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन नियमित रूप से उपलब्ध होता है तब उसे खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है। दुनिया में आज भी जागृति जी, लाखों लोग भूख, कुपोषण और भोजन की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा केवल एक आवश्यकता नहीं है बल्कि मानव जीवन का मूल अधिकार बन चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: खाद्य सुरक्षा का संबंध खेती, पर्यावरण, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास से भी जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य केवल भोजन की उपलब्धता से नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि भोजन सुरक्षित, पौष्टिक और सभी लोगों की पहुंच में हो।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए सुरक्षित भोजन बहुत जरूरी है। यदि भोजन में मिलावट हो और उसमें हानिकारक रसायन हो, वो स्वच्छता के अभाव में तैयार किया गया हो, तो अनेक बीमारियां जन्म ले सकती है।
1: जी जी।
0: श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि सुरक्षित भोजन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवाओं को ऊर्जा, एकाग्रता और कार्यक्षमता प्राप्त होती है अंजलि, जबकि बुजुर्गों को स्वस्थ जीवन जीने में सहायता मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा प्रत्येक आयु वर्ग के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। भोजन में हमें ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज प्राप्त होता है। यदि भोजन पर्याप्त और पौष्टिक नहीं होगा तो व्यक्ति बीमारियों का शिकार हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने पर लोग स्वस्थ रहते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वो बेहतर जीवन जी पाते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि भारत सहित कई देशों में कुपोषण एक बड़ी चुनौती है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में कुपोषण के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है।
0: जी हाँ।
1: जब सभी लोगों को पौष्टिक भोजन मिलता है तो कुपोषण, एनीमिया, कमजोरी और विकास संबंधित समस्याओं में कमी आती है। बच्चे देश का भविष्य है श्रोता साथियों। यदि बचपन में ही उन्हें उचित पोषण नहीं मिलेगा तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होगा।
0: बिल्कुल।
1: खाद्य सुरक्षा बच्चों को स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है।
0: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हम बताएं, आर्थिक विकास में योगदान होता है खाद्य सुरक्षा योजना। यानी कि श्रोता साथियों, खाद्य सुरक्षा का सीधा संबंध किसी देश की अर्थव्यवस्था से भी है।
1: बिल्कुल।
0: जब नागरिक स्वस्थ होते हैं तो उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और वे अधिक उत्पादक बनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इससे उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों में भी विकास होता है। दूसरी ओर यदि लोग असुरक्षित भोजन के कारण बार बार बीमार पड़ेंगे अंजलि, तो स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ता है और उत्पादन क्षमता करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा आर्थिक समृद्धि का भी एक महत्वपूर्ण आधार है।
1: जी
0: और
1: हाँ।
0: कहा भी गया है कि स्वस्थ नागरिक, मजबूत राष्ट्र खाद्य सुरक्षा का सबसे खास है। यानी कि श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आज खाद्य सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है खाद्य पदार्थों में मिलावट। दूध, मसाले, मिठाइयाँ, तेल और अन्य वस्तुओं में मिलावट की बहुत सारे मामले सामने आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मिलावटी भोजन अंजलि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे हम देखते हैं कि हमारा पेट संबंधी रोग हो जाते हैं, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, हमें कई सारी गंभीर बीमारियां हो जाती है। इसलिए मिलावट पर कठोर नियंत्रण और जन जागरूकता बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी बातें चल रही है खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर। तो ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी हमने गीत से पहले जाना कि किस तरीके से खाद्य सुरक्षा का महत्व हमारे जीवन में है और खाद्य सुरक्षा अपनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि किसान खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। वे दिन रात मेहनत करके अनाज, फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं। यदि किसानों को उचित मूल्य, सिंचाई, बीज, तकनीक और बाजार की सुविधा मिलेगी तो उत्पादन बढ़ेगा और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। इसलिए किसानों का सम्मान और सहयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की भी भूमिका होती है। सरकार कई प्रकार की योजनाएं और कानूनों के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास भी करती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर के भोजन योजना, पोषण अभियान और खाद्य गुणवत्ता की निगरानी, ये सारे कदम खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। साथ ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच और मिलावट करने वालों पर कठोर कार्रवाई भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: दुनिया में लाखों लोग भूख से जूझ रहे हैं अंजलि, जबकि दूसरी ओर बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: भोजन की बर्बादी खाद्य सुरक्षा के लिए श्रोता साथी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। बचा हुआ भोजन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करना होगा।
0: जी जी।
1: यदि समाज भोजन की बर्बादी रोक देगा तो खाद्य सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत किया जा सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा का पर्यावरण से गहरा संबंध है।
1: बिल्कुल,
0: यदि मिट्टी, जल और जैविकता सुरक्षित रहेगी तभी भविष्य में पर्याप्त खाद्य उत्पादन संभव होगा। इसलिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। श्रोता साथियों, भोजन केवल एक वस्तु नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। जब समाज का हर व्यक्ति भरपेट और पौष्टिक भोजन प्राप्त करता है तब एक स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है।
1: जी हाँ।
0: जागृति जी, श्रोता साथियों से ये कहना चाहेंगे कि खाद्य सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, किसान, उपभोक्ता, सामाजिक संगठन और आम नागरिक सभी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें भोजन की बर्बादी रोकनी चाहिए, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए और पौष्टिक भोजन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि श्रोता साथियों, खाद्य सुरक्षा किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक मजबूती की पहचान है। यह केवल भूख मिटाने का विषय नहीं है बल्कि मानव गरिमा, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस समाज में हर व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता है जागृति जी, वहाँ बीमारी कम होती है, शिक्षा का स्तर बेहतर होता है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा का गहरा संबंध है। यदि जल, भूमि और वायु प्रदूषित होंगे तो खाद्य उत्पादन भी प्रभावित होगा। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना समय की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं अंजलि कि खाद्य सुरक्षा केवल एक सरकारी योजना या नीति नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक के स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन का आधार है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन हर व्यक्ति का अधिकार है। ये न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय प्रगति को भी गति देता है। आज अंजलि आवश्यकता है कि हम सभी खाद्य सुरक्षा के महत्व को समझें, भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दें, मिलावट का विरोध करें, भोजन की बर्बादी रोकें और किसानों का सम्मान करें। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस दिशा में अपना योगदान देगा तभी एक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण संभव होगा।
0: जी जी।
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि जीवन की ऊर्जा, स्वास्थ्य की नींव और विकास की शक्ति है। जिस दिन हर घर की थाली में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन होगा उस दिन भूख, कुपोषण, बीमारी पर बहुत बड़ी जीत होगी अंजलि।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, हम सुरक्षित भोजन अपनाएं, खाद्य संसाधनों का सम्मान करें और खाद्य सुरक्षा को जन जन का अभियान बनाएं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम खाद्य सुरक्षा को केवल सरकारी योजना के रूप में न देखें बल्कि इसे सामूहिक जिम्मेदारी माने। किसानों के परिश्रम का सम्मान करें, भोजन की बर्बादी को रोकें, पोषण के प्रति जागरूक बने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य संसाधनों का संरक्षण करें।
1: जी हाँ।
0: जब हर घर में भोजन की सुरक्षा होगी तभी सच्चे अर्थों में स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। श्रोता साथियों, अन्न का करे सम्मान तभी बनेगा स्वस्थ हिंदुस्तान। हर थाली में पोषण भरपूर, खाद्य सुरक्षा से होगा भविष्य मजबूत और जरूर।
1: बिल्कुल, तो इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम के साथ अंजलि हम विदा लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को हम कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाना चाहेंगे।
0: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अंजलि बोन गीत ते आंशु पूरु अणा गीत बाद एक वगत फेरे स्वागत कर रहा आपड़े बोनन नु कार्यक्रम घूमर में जिम की अंजलि बोन गीत थे की पहले विषय बताड़ियो हतु के आज अपन बात करवा वाला हां की कम उम्र में आपड़े जी बोनन ने शादी करावी ना की एन खाती हूँ समस्या थे एनो अपने बोन माते हूँ प्रभाव पड़े हेम
1: हवे
0: अंजलि बोन अपन देखा हूँ की बाल विवाह कम उम्र में विवाह आज ने सब कदी मोटी गंभीर समस्या बनी चुकी है। कानून ने विवाह ने न्यूनतम आयु निर्धारित करी है फिर भी अपन घना स्थान में देखा हाँ की सूर्य ने शादी है वे कम उम्र में करावी ना के आ केवल एक सामाजिक परंपरा नती बल्कि अपने बोन ने स्वास्थ्य शिक्षा ने आत्मनिर्भर ने सम्मान खती जुड़ियु खतु विषय है। कम उम्र में शादी नो प्रभाव अपन देख हाँ की आपड़े बोन तक सीमित नहीं रहतु बल्कि वन ने परिवार वन ने सूर ने पूरा समाज माते पड़े है।
1: हवे मनीषा बोन आपे सही कीधु आपड़े देख हाँ की शादी जीवन नो एक सप्त की महत्वपूर्ण निर्णय रहे है। आ केवल बे मनकनु नहीं रहतु बल्कि बे परिवारों नो रिश्तो रहे एवं में सही टाइम माते फैसला लेवा ने समझदारी तक फैसला लेवा घणो जरूरी है। जेवी वगत कम उम्र में शादी थी जा तो घणा आकानी चुनौती सबने हामे आवे है जेनु असर व्यक्ति परिवार ने समाज माते पड़े है। पण आज ना टाइम में आपणे देखिए ने हां क्या केवल चुनौती नी चर्चा नथी बल्कि आ समझवानी है कि हरते आपणा ने सही निर्णय लेवो है शिक्षा ने जागरूकता ने माध्यम तक आपणे हरते बेहतर भविष्य नु निर्माण करी शक किम के आपणे देखो हां के हर काम नु एक उचित टाइम रहे जेवी वगत खेतर में आपणे बीज बोव हां तई वगत सही मौसम ने अनुसार आपणे बीज बोव हां तो आपणे फसल असल मळे है। एमस आपणे जीवन ना मोटा जे फैसला है ई भी अगर टाइम माते ल तो आपणे एनु बेहतर परिणाम मळे है किम की युवा अवस्था जे है ई हिकवानी ने व्यक्तित्व विकास नी अवस्था रहे शिक्षा प्राप्त करवानी खुद ने पोगम माते उभो थवानु टाइम रहे जेई वगत सोर

0: भाई बहनों अणस के साथ कार्यक्रम घूमर टकी अमे पूर्ण सूट आशा कर हूँ की आज कार्यक्रम में अमारी अब तक जो भी बातें रही है आपने गमी होगा क्योंकि अभी टाइम थे गयो है अपने अणस कार्यक्रम थकी सूट पड़वानु तो सूट तो पड़ा पण साथे पहले अपने भाई बहनों ने अपने कार्यक्रम नु पतु बताड़ दो ताकि आज ना कार्यक्रम एना ने केवु लाग्यु एनी बारे में राय सुझाव अपना ने आली सके अपने अणापता माते
1: हवे भाई बहनों अमारु पतु है कार्यक्रम घूमर वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान अमारो पिनकोड नंबर है 3270001 अजी वधारे जानकारी बलदे आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते अमारो फोन नंबर है 9460051234
0: तो भाई बोनु फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक ना विषय ने हाते तारुदी
1: राम राम राम राम, राम, राम।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनू खवानू सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हूं, यहाँ आपड़े नी कितली शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
3: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
2: होवे आज नाना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अंजलि पारेशर। स्वागत करती हूं आपका कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, जहां हम बात करते हैं उन सपनों की जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं और उन हौसलों की जो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है, दूसरों की हंसी से अपने सपने मत छोड़िए। जी हाँ, कई बार हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ लोग अलग करना चाहते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने सपनों की बात लोगों से करते हैं तो कुछ लोग हंसने लगते हैं। कुछ कहते हैं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतना बड़ा सपना मत देखो, तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे उनकी बातें हमारे मन में घर करने लगती है और हम अपने ही सपनों पर शक करने लगते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, सचमुच दूसरों की हंसी हमारे सपनों की कीमत तय कर सकती है? तो आज कार्यक्रम में जानेंगे इस विषय पर हम ढेर सारी बातों को। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि दूसरों की हंसी से अपने सपने मत छोड़िए। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सामान्य रास्ते से हटकर कुछ नया सोचता है तो अक्सर लोग उसे समझ नहीं पाते। यदि कोई गांव का युवक कहे कि वह अपना व्यवसाय शुरू करेगा तो कुछ लोग कहेंगे ये भी कोई काम है क्या। यदि कोई लड़की कहे कि वह अधिकारी बनना चाहती है तो कुछ लोग हंसकर कह देते हैं कि इतना आसान नहीं है। यदि कोई किसान नई तकनीक अपनाने की बात करे तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। दरअसल लोग अक्सर उसी चीज पर हंसते हैं श्रोता साथियों, जिसे वे समझ नहीं पाते। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब लोग आपके सपने पर हंस रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका सपना साधारण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दूसरों की हंसी उतनी ही नुकसान नहीं पहुंचाती है जितना हमारा उस हंसी पर विश्वास कर लेना हमें नुकसान पहुंचाता है। जब हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि लोग सही कह रहे हैं, तब हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है, हम कोशिश करना छोड़ देते हैं और हम ये सोचते हैं कि शायद मैं सचमुच योग्य नहीं हूँ, शायद मेरा सपना बहुत बड़ा है, शायद मुझे सब छोड़ देना चाहिए, और यही सबसे बड़ी हार होती है। जी हाँ दोस्तों, हार तब नहीं होती है जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, हार तब होती है जब आप खुद पर विश्वास खो देते हैं। इतिहास हमारा जो है ना दोस्तों, वो ऐसे लोगों से भरा हुआ है कि जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े बदलाव किए हैं, और उनकी शुरुआत मजाक उड़ाने से ही हुई थी। जब किसी ने कहा होगा कि इंसान आसमान में उड़ सकता है तो लोग हंसे होंगे। जब किसी ने कहा होगा कि एक छोटा सा उपकरण पूरी दुनिया को जोड़ देगा तब भी लोग हंसे होंगे। लेकिन जिन्होंने अपने सपनों को लोगों की हंसी से बड़ा माना है, वही आगे चलकर इतिहास बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिन सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं उनमें से अधिकांश ने कभी न कभी उपहास, आलोचना और अस्वीकार का सामना किया होगा। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि आज कार्यक्रम में मैं ये कैसे बातें कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारे साथ यही होता है, हम असल जिंदगी में अक्सर कुछ सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, और जब ये बातें हम किसी अन्य व्यक्ति से साझा करते हैं तब हमेशा ही एक विरोधी जवाब हमारे सामने आता है। इसमें क्या रखा है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें आगे कोई फील्ड ही नहीं है, या ऐसा करोगे और कुछ सही नहीं हुआ तो लोग तुम पर हंसेंगे। ऐसी बातें जब हमारे मन में आती है तब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उससे पहले विश्वास अपने ऊपर से खो देते हैं, और जब हम विश्वास को खो देते हैं दोस्तों तो हम उस कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और हमारा जो सपना है वो टूट जाता है। तो जैसा कि कार्यक्रम में मैं बहुत अच्छे विषय पर आपसे बातचीत कर रही हूँ, आगे मैं एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से इस विषय को आपको समझाना चाहूंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान रहे थे कि किस तरीके से इतिहास जो है वो ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनकी हर बात का शुरुआत में मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने खुद के सपनों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा और अपने सपनों को पूरा किया। एक छोटी सी कहानी है कि एक छोटे से गांव में रहने वाला मोहन पढ़ाई में सामान्य था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत थी, लेकिन उसका सपना था कि वह शिक्षक बने। जब उसने अपनी इच्छा लोगों से बताई तो कई लोग हंसने लगे। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, किसी ने कहा कि इतनी बड़ी बातें मत करो, किसी ने कहा पहले अपनी हालत तो देखो। मोहन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा। वह रोज पढ़ता रहा, कई बार असफल हुआ, परीक्षा में भी एक दो बार सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। कुछ वर्षों बाद वही मोहन शिक्षक बन गया। एक दिन वही लोग उसके पास अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सलाह लेने आने लगे। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि लोगों की हंसी अस्थाई थी, लेकिन उसका सपना जो था वो स्थाई था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लोगों की राय बदलने में समय नहीं लगता है, लेकिन सपनों को पूरा करने में उससे भी ज्यादा धैर्य लगता है। क्योंकि सपने देखना आसान जरूर है, लेकिन उन्हें पूरा करना मेहनत मांगता है। इस रास्ते में आलोचनाएं भी मिलती हैं, असफलताएं भी मिलती हैं, निराशा भी मिलती है और लोग हंसते भी हैं। लेकिन यही वह समय होता है दोस्तों जब हमें अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। यदि हर व्यक्ति लोगों के डर से अपने सपने छोड़ देता है तो दुनिया में कोई भी काम कभी नहीं होता। इसलिए किसी ने कहा है कि जिस रास्ते पर कोई नहीं चलता उसी रास्ते पर चलने वाले लोग नई मंजिल बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, खुद को मजबूत करने की जरूरत है। हम खुद को मजबूत कैसे बनाएं? तो हमें अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना है। जब भी कोई आपका मजाक उड़ाए तो अपने सपने को याद कीजिए। खुद से पूछिए कि मैंने यह सपना क्यों देखा था। दोस्तों, यकीन मानिए, जब ये सवाल आप खुद से करते हैं तो ये सवाल आपको मजबूत बना देगा। इसी के साथ सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको हौसला दें। हर समय आलोचना सुनना मन को कमजोर कर देता है, इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। छोटी छोटी सफलता को पहचानिए, यानी कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने में सफलता मिलती है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल तक हमें पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब भी हम कुछ सपना देखें तो सीधे बड़ा प्राप्त करने की ना सोचें। छोटी छोटी चीजों से हमें शुरुआत करने की जरूरत है। जो व्यक्ति सीखता रहता है वह आगे अवश्य बढ़ता है। इसलिए ज्ञान और कौशल को आत्मविश्वास के साथ हमें मजबूत बनाने की जरूरत है। और कार्यक्रम के माध्यम से मैं युवा साथियों को यह संदेश देना चाहूंगी कि युवा साथियों, आपका सपना चाहे नौकरी का हो, व्यवसाय का हो, पढ़ाई का हो, खेल का हो या समाज सेवा का, उसे दूसरों की हंसी के कारण मत छोड़िए। याद रखिए कि आज जो लोग आपकी कोशिशों पर हंस रहे हैं, कल वही आपकी सफलता की कहानियां सुनेंगे। दुनिया हमेशा परिणाम दिखती है, लेकिन संघर्ष केवल वही व्यक्ति जानता है जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा होता है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि जीवन में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके सपनों की कीमत नहीं समझेंगे। कुछ लोग आपको रोकेंगे, कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपकी कमियां गिनवाएंगे, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आपकी जिंदगी लोगों की राय से नहीं चलेगी, आपके विश्वास से चलेगी। सपने इसलिए नहीं छोड़े जाते दोस्तों कि लोग हंस रहे हैं। सपने इसलिए पूरे होते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति उन हंसियों के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। जब भी कोई आपके सपनों पर हंसे तो निराश मत होइए। उस हंसी को अपनी मेहनत का ईंधन बनाइए, उसे अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाइए। क्योंकि दूसरों की हंसी कुछ समय के लिए सुनाई देती है, लेकिन अपने सपनों की आवाज पूरी जिंदगी साथ रहती है। इसलिए लोगों की हंसी नहीं, अपने दिल की आवाज सुनिए, हौसला बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों की उड़ान कभी मत रोकिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करती हूँ कि आज हमारे कार्यक्रम में जो आपसे बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे कि तुम्हारी राह कठिन रहेगी, लेकिन अपने मन की सुनना मंजिल खुद आकर मिलेगी। जब जब दुनिया ने रोका है, तब तब इतिहास बना है। जो डर कर पीछे हट जाते हैं, उनका सपना कहाँ खिला है। हंसी उड़ाना आसान बहुत है, सपनों को जीना मुश्किल है। जो गिरकर फिर उठ जाते हैं, उनका जीवन ही मंजिल है। छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, रोज नया विश्वास जगाओ। आंधी आए, तूफान आए, फिर भी अपना दीप जलाओ। कल जो तुम पर हंसे होंगे, कल ताली भी बजाएंगे। आज तुम्हें जो कम समझे, कल मिसाल तुम्हें ही बताएंगे। मत रुकना दोस्तों लोगों की बातों से, मत झुकना झूठी हारों से। अपने सपनों को थामे रखना उम्मीदों के उजियारों से। याद रखो यह बात हमेशा, जीवन का यही सार है। सपने सच होते हैं उनके जिन्हें खुद पर एतबार है। जी हाँ, हंसी उड़ाने वालों की आवाजें समय के साथ खो जाती हैं, लेकिन सपनों के लिए की गई मेहनत एक दिन कहानी बन जाती है। श्रोता साथियों, अब विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में।